मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। श्रोताओं, आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई 2026। सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारे प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर सुबह के 6 बजने को है। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक

0: सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हो रहे हैं। एक सकारात्मक ऊर्जावान दिन का स्वागत करते हैं और सुबह सुबह की इस पावन वेला में प्रभु सुमिरन करें भक्तिमय भजनों के साथ। सुनिए कार्यक्रम वंदना।

नमस्कार, सुप्रभात श्रोताओं। नई सुबह की सुनहरी किरणें और प्रभु की पावन वंदना के साथ आपका स्वागत है कार्यक्रम वंदना में, जहां हर सुबह होती है सकारात्मक विचारों, मधुर भक्ति संगीत और मन की शांति के नाम।

भुवत्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस ओमकार मंत्र के साथ, गायत्री मंत्र के साथ वंदना भक्ति संगीत का आगाज हुआ है और दिन की शुरुआत हम कर चुके हैं। सुबह की ताजी हवा है, मंदिरों की घंटियां और भक्ति संगीत का मधुर धुनी, है ना, यही तो है खूबसूरत सुबह की पहचान।

0: मीनाक्षी पांचाल की आवाज़ में ये भक्तिमय प्रस्तुति, जिसमें कि आप बिल्कुल भक्ति रस में डूब गए हैं। आकाशवाणी उदयपुर से आप कार्यक्रम वंदना सुन रहे हैं, और कार्यक्रम वंदना में अगला गीत सुनवाने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये खूबसूरत भजन भक्ति प्रस्तुति आपने सुनी बेला सिंधे की आवाज़ में। दिन की शुरुआत हमने की है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के साथ। श्रोताओं, आप हैं आकाशवाणी उदयपुर के संग और भक्ति में प्रस्तुति आगे बढ़ाते हैं। ऐसी भक्ति में प्रस्तुति जो मन को सुकून दे और आत्मा को नई रोशनी से भर दे।

हरी में खोया हूँ मैं। जी हाँ, इसी सकारात्मक ऊर्जा और प्रभु के आशीर्वाद के साथ अब मैं लेती हूँ विदा कार्यक्रम वंदना से। आपका दिन मंगलमय हो।

यह आकाशवाणी उदयपुर है। श्रोताओं, सुबह के 6:35 हुए हैं और अब आज दिन भर प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की आपको जानकारी दे देते हैं। तो श्रोताओं, आज आकाशवाणी उदयपुर पर जो प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे वो है सुबह 9:30 का समय और प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, जरूर सुनिएगा। और दिल्ली से रिले होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताएं तो चर्चा का विषय रात्रि 9:30 पर और जयपुर से रिले होगा कार्यक्रम जिले की चिट्ठी संध्या 6:40 पर। अब श्रोताओं, फिल्म संगीत की आपको जानकारी दे देते हैं। सुबह 7 सुनिए फिल्म संगीत सदाबहार नगमे और 10 कुछ बातें कुछ गीत में भी समाहित होंगे फिल्म संगीत के नगमे। दिन के 12 सुनिए फिल्म संगीत और दोपहर 1:45 पर भी आपका मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत होगा और संध्या की सभा में 6:05 पर और रात्रि 8 भी आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत और आनंद उठा सकते हैं। अब राजस्थानी लोक संगीत की बारी है। गोखड़ा, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं सुबह 11:00। सुगम संगीत की जानकारी दें तो सुबह संगीत जरूर सुनिए सुबह 7:45 पर और 11:30 पर सुबह की सभा में और रात्रि की सभा में 9:15 पर भी आप सुगम संगीत सुन सकते हैं।

हमारे किसान भाई सुनते हैं उनका दैनिक कार्यक्रम खेती में आज सुबह 6:50 पर और शाम 7 खेती और घर। हमारी महिला साथी सुनती हैं उनका पसंदीदा कार्यक्रम दोपहर 1:05 पर। युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवानी संध्या 5 जरूर सुनिएगा। बहुत सारी जानकारी, लेटेस्ट बातें और फिल्म संगीत समाहित होता है ये कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत भी आप सुन सकते हैं रात्रि 10 और श्रोताओं, अब आपको बता दें कि आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में आप क्या क्या सुनेंगे। आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम को हम कहते हैं मिड वीक वाइब्स बुधवार, और आज इसमें जानकारी मनोरंजन के साथ साथ सुनिए आकाशवाणी के 90 साल पर शकुंतला सरूपरिया का कविता पाठ। नमस्कार उदयपुर में आप सुनिए आज जो स्थानीय खबरें हैं, लेटेस्ट जानकारी और आईपीएल अपडेट्स तो होगा ही। फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर भी हम बात करेंगे और आर के नारायण की पुण्यतिथि पर भी आपको जानकारी देंगे। इंस्पिरेशनल जोन में आज यूथ आइकन रहे होंगी सफल उद्यमी अनन्या बिरला। फन फैक्ट में विभिन्न प्रकार के फोबियाज की आपको जानकारी मिलेगी, जरूर सुनिएगा ये बात इन बातों को, और कविता पाठ तो आप सुनेंगे ही। नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम सुबह 8:30 पर। तो श्रोताओं, ये था आज दिन भर प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 6:40 होने को हैं। अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, संगीत सतीश भाटिया का।

मारीच तथा सुबाहु सहित अन्य राक्षसों के उपद्रव से मुक्ति पाने के उद्देश्य से विश्वामित्र ने राजा दशरथ के सम्मुख उपस्थित हो राक्षसों के संहार के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रघुनाथ जी की याचना की। बोले, इनके द्वारा राक्षसों के वध होने पर वह निरापद हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर महाराज दशरथ के मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। वह मुनि के चरणों में धरती, गोधन, राजकोष, अपना सब कुछ अर्पित करने को प्रस्तुत थे, किंतु प्राणों से भी अधिक प्रिय राम को मुनि को देते किसी प्रकार नहीं बनता। ये सुकुमार किशोर भला किस प्रकार राक्षसों का सामना कर सकेंगे? तब गुरु वशिष्ठ ने अपने वचनों द्वारा राजा दशरथ का संदेह और अज्ञान दूर किया। राजा ने अपने दो पुत्र मुनि विश्वामित्र को सौंप दिए। पुरुष रूप में दो सिंह श्रीराम और लक्ष्मण मुनिजन के कष्ट हरने चले। श्याम और गौर वर्ण के दो परम सुंदर किशोरों के रूप में मुनिवर को जैसे दुर्लभ निधि प्राप्त हो गई हो। राह में ताड़का वध करते हुए दोनों भाई मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसी विद्या प्राप्त की जिससे भूख प्यास न लगे तथा शरीर में अतुलित बल और तेज

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, संगीत सतीश भाटिया का। श्रोताओं, ये आकाशवाणी उदयपुर है और आपने ट्यून इन किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। अब हमारे किसान भाई सुनेंगे उनके लिए खास कार्यक्रम खेती में आज।

राम राम किसान भाया, राम राम। खेती में आज कार्यक्रम सुनो वाला सगला किसान भाया ने पेमा भाई रो राम राम। देखो सा किसान भाया, आपने कार्यक्रम भी टेम भी और मो आयो आपने घनी सारी जानकारी देवर वास्ते। तो आज अपने कार्यक्रम रा महीने आपने जानकारी देवा चारा फसल की आपकी गणित तैयारी कर सका और चारा फसल को आपकी गणित इस्तेमाल कर सका। तो देखो सा चारा फसल री बात यूं करी रहा हाँ कि बाण जो टेम चल रही है अपना चारा फसल री उगावरी चल रही है, क्योंकि देखो अपना ढांडा चोपा जितना भी व्याह करे वणारा वास्ते जो है गर्मी री टेम पे उंदाड़ा री टेम पे जो है चारा की जो है कमी वही जावे। तो अणी टाइम पे अपने जो है चारा फसल है वणी पे ध्यान देवनो चावे। और जो किसान भाई अपने खेती बाड़ी ला रहा पशु पालन करे है डांडा चोपा राखे गायें भियां रखे है, तो वणारा वास्ते चारा की फसल को जो है उगावनो बहुत ही ज़्यादा जरूरी व्या करे, क्योंकि चारा की फसल जो है पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो अपना मवेशी जितना भी है अपना पशुधन जो है वणा का वास्ते जो है पर्याप्त मात्रा रा महीने जो है चारों उपलब्ध वेगा। और चारों उपलब्ध वेगा तो देखो कि वणा के दूध को उत्पादन भी जो है पर्याप्त मात्रा में वण्यो देखो रहेगा। अणि वास्ते जो है किसान भाया चारा फसल का की जानकारी आप वास्ते ले ही ना यहाँ। तो अब बात करें देखो चारा फसल कणित्रो उगावनी और कई कई करनो है। तो बात यह है कि चारा फसल में कई कई आवे। अब अण में देखो बरसीम है, जई है, लोबिया के बीज है, यह वाली जो फसला है अणा के कटाई को काम करता दिखाई जो अपना 10-12 दाना का अंतराल रे महीने अपना जो पाणत करनी चाहे। और ई महीना रे महीने देखो कि हरा चारा का वास्ते अपने बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, अणि फसल की जो बुआई अपने करनी चाहे। और अण की बुआई जो है अपने पहली जो शुरू हुई आप ही कर चुके हाँ, तो वणी के अंत में या पचे अप्रैल में जो है आप ही की दी है। और

0: वणे वो मुक्ति आप ही राख सका। और डांडा चोपा ना पोषण जो मिले तो देखो दूध को उत्पादन जो है पर्याप्त मात्रा में वे सके, क्योंकि देखो आप ही खाली खेती बाड़ी करा विकोच काम नहीं चले है। खेती बाड़ी रलारे जो है आप ही मवेशी रखा जड़े में बड़ी गायें रखो भैंसा रखो नरे लोग बाग बकरियां भी रखे और भी जो है लोग बाग बलि ऊँट रखे है नरे जो है भेड़ रखे है। तो आप ये सोचा कि देखो बकरियां है भेड़ है वनारा वास्ते तो जरूरत नहीं पड़े है, लेकिन यदि अपने गाय भैंस रख रखी है तो गाय भैंस वास्ते अपना चारा फसल जो है वह लावनी जरूरी है। अब देखो नरे किसान भाई जो कहीं करे कि चारा फसल को बंदोबस्त नहीं कर पावे जाना कि वहाँ का खेत ऊपर जो है पानी को बंदोबस्त नहीं है वाणु गर्मी री टाइम चल रही है तो वहाँ के जो है पाणत करवारी जो परेशानी आई जावे कूड़ा में पानी उतर जावे या पचे वहाँ खेत रो पर पानी नहीं है तो वे देखो चारा फसल की बुवाई नहीं कर सके। लेकिन जे किसान खेत रो ऊपर जो पानी पर्याप्त मात्रा में है तो वे चारा फसल की बुवाई करे है। और नरी बार अपन ये बात देखवाने मिले कि जे किसान भाई का खेत रो ऊपर पानी पर्याप्त मात्रा में है तो वे चारा फसल उगावा वास्ते देखो कि वो प्रयास करे है। और वे तो क्यारियाँ के क्यारे जो है वो अपने वे किसान भाई ने देवे जना के मवेशी राख मिलिया है तो वही साबो कही कि मवेशियाँ जो है पूर्ति यानी मौसम में वही जावे। आप ही उम्मीद करा कि यह जो जानकारी है अपना किसान भाई वास्ते लाभकारी साबित होगा और जानकारी देवारा वास्ते और भी है पर किसान भाई आप कार्यक्रम में जावारी टाइम वेगी तो चला सा राम राम सा।
1: तो श्रोताओं अभी आपने सुना खेती में आज,

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है जो कि आपने ट्यून इन किया है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 7:01 हो गए हैं और अब वक्त हो गया है इस सुहावनी सी सुबह का आनंद उठाने का। फिल्म संगीत के जरिए सदाबहार नगमे लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त कविता। और चलिए इस संगीत में सफ़र का आगाज करते हैं एक बड़े ही खूबसूरत से गीत के साथ जो कि हमने लिया है फिल्म किसना से। ए आर रहमान का संगीत, जावेद अख्तर ने गीत के बोल लिखे हैं और गीत को गाया है उदित नारायण के संग मधुश्री ने।

गीतों भरी सुबह का आगाज हुआ है श्रोताओं, और हर दिल में एक नया अंदाज हुआ है। सुरों की मिठास से महकेगा ये समा, खुशियों से भरा आज का ये सवेरा हुआ है। और सदाबहार नगमे में अगली प्रस्तुति आप सुनेंगे उदित नारायण और पामेला जैन की आवाज़ में। इब्राहिम अश्क ने गीत के बोल लिखे हैं, राजेश रोशन का संगीत, और फिल्म का नाम कोई मेरे दिल से पूछे।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से श्रोताओं सदाबहार नगमों में। अगला जो गीत हम आपको सुनवाएंगे वो है हमने लिया है फिल्म कोई आपसा से। उदित नारायण और अलका याग्निक ने इस गीत को गाया है, समीर ने गीत के बोल लिखे हैं और हिमेश रेशमिया का संगीत है।

श्रोताओं सदा बहार नगमों का आप आनंद उठा रहे हैं। अगला गीत आप सुनिए, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, इस फिल्म से कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज़।

0: बुधवार की ये सुहावनी सी सुबह है श्रोताओं, और सुहानी सी सुबह को संगीत और सुरों की मिठास से हम भर रहे हैं। आकाशवाणी उदयपुर के संग हैं आप और सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप एंजॉय कर रहे हैं। एक छोटा सा हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार आप सुनेंगे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में फिल्म मेरे दिल ने किया है।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
0: फिल्म कानून का ये गीत सुनिए, राम लक्ष्मण का संगीत और लता मंगेशकर के साथ एसपी बाला सुब्रमण्यम।

श्रोताओं, सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का आखिरी नगमा अब हम आपको सुना रहे हैं। फिल्म है करीब, कुमार शानू की आवाज़, अनु मल्लिक का संगीत।

तो श्रोताओं इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमों का सफर यहीं तक है। यह आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 7:45 हुए हैं और अब आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुगम संगीत में पहला नगमा हम

और इस जगजीत सिंह के गीत के साथ ही सुगम संगीत यहीं तक। श्रोताओं, आज की सुबह बड़ी ही खुशनुमा है और थोड़ा सा पर्यावरण के प्रति भी हमें सचेत रहना चाहिए, है ना। तो अभी थोड़ा आपो हवा भी ज़रूर से हम आपको बताएंगे कि हमें क्या हमारा दायित्व है, हमें किस तरह से पर्यावरण को संरक्षण करना है। तो पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या है श्रोताओं? प्रकृति, जल, वायु, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की रक्षा करना है ना, ताकि धरती का ना हमारे धरती का संतुलन बना रहे। और देखिए आज जो है ये बढ़ता प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और हमारे जो छोटी छोटी आदतें होती हैं ना, जल की बर्बादी, ये सभी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे मौसम में तो बदलाव हो ही रहा है, देखिए गर्मी कितनी बढ़ रही है और कई तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं। अब मुख्य उपाय क्या क्या हैं पर्यावरण संरक्षण के? तो अधिक से अधिक पेड़ लगाना, ये तो हम सभी जानते हैं। चलिए इस बार बारिश आएगी तो हम जरूर पेड़ लगाएंगे, है ना, अपने आप से ये वादा कर लीजिए। पानी और बिजली की बचत करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और अभी तो विशेष खासकर अगर बिजली के उपकरण काम में नहीं आ रहे हैं, अगर एसी कूलर काम में नहीं, अगर आप वहाँ नहीं बैठे हैं, तो उन्हें स्टैंड बाई मोड पर मत रखिए, उन्हें बंद कर दीजिए।

तो ताकि उसका कंप्रेशर जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा और इससे बिजली की बचत भी होगी और पानी की तो बचत हमें करनी ही है। प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम हमें करना चाहिए, कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। पेपर बैग्स और हाथ में कपड़े का थैला लेकर के घर से बाहर ज़रूर निकले अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो, और अपने घर के आसपास सफाई ज़रूर रखें। इसमें तो क्या हमें हमारा ये छोटा सा योगदान यही तो है कि घर का कचरा हम घर के बाहर ना फेंके, घर के वहाँ सामने की सड़क पे आसपास के एरियाज में ना फेंके। जब घर में गाड़ी वाला कचरा वाला आता है तो गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके उसमें ही डालें, है ना। और प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ों से हमें बचना है और स्वच्छ आबोहवा हमारे अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो तभी तो आने वाली पीढ़ियाँ स्वच्छ और सुरक्षित जीवन जी पाएंगी। और श्रोताओं, गर्मियों में पानी की बचत करना भी कितना ज़रूरी है ना। गर्मियों के मौसम में पानी की बचत बहुत ही लाजमी होनी चाहिए। पानी की खपत बढ़ जाती है, तेज़ गर्मी के कारण तालाब नदियां और भूजल स्तर धीरे धीरे कम होने लगते हैं और अगर हम पानी को व्यर्थ बहाएंगे तो भविष्य में पीने का पानी की समस्या और गंभीर हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, नल को खुला ना छोड़ें, नल को टपकते हुए नल को टाइट से बंद कर दें, ज़रूरत भर जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करें, वर्षा जल संरक्षण का करें और गाड़ी और आंगन धोने में भी कम पानी का प्रयोग करें। पेड़ पौधे लगाकर वातावरण को ठंडा रखें, है ना। जल ही जीवन है, अगर हम आज पानी बचाएंगे तभी तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और पर्याप्त जल मिल सकेगा। तो श्रोताओं, अभी हमने आपके साथ चर्चा की पर्यावरण की, हमारे आबोहवा की, इसमें हमें अपना दायित्व जरूर निभाना है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, सुनना ना भूलें सुबह 8:30 पर नमस्कार उदयपुर। अभी बजने को है सुबह के 8, तो हम जुड़ेंगे कुछ ही पलों में हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। बने रहिए आकाशवाणी उदयपुर के संग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।

0: जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदयचंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्यभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग सहयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए।

0: तिलचंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेकिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किये। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के

0: सेंगोमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देशबंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.

0: सुबह की इस खूबसूरत सी वेला में आपका दिल से स्वागत है। नई किरणों के साथ आई है नई उम्मीदें, नए सपने, नई ऊर्जा। तो चलिए मुस्कुराहट के साथ करते हैं आज के दिन का स्वागत।
1: बिल्कुल स्वागत करते हैं, नमस्कार, गुड सुप्रभात कहते हैं आपसे। और आज है 13 मई 2026 का बुधवार का ये मिडवीक वाइब्स के साथ आप सभी का इस संख में स्वागत। आज मैं आपके सारा स्वागत करने के लिए आज आपके साथ हैं मैं डॉक्टर सीमा।
0: बिल्कुल नमस्कार उदयपुर लेकर के मैं हूँ आपके साथ रेडियो दोस्त कविता। और आपके लिए हम लेकर बहुत कुछ आए हैं आज सीमा, है ना, बहुत सारी जानकारियां हैं, प्रेरणा स्रोत बातें हैं, मधुर संगीत है, ढेर सारी पॉजिटिविटी है आज के।
1: तो बता दें क्या क्या है, स्थानीय खबरें होंगी, IPL अपडेट होगी और हम फखरुद्दीन अली अहमद
0: जी की जयंती पर,
1: उनकी जयंती पर आपको जानकारी देंगे। वहीं आर के नारायणन जी की पुण्यतिथि है, उन पर भी

0: बात हम करेंगे इंस्पिरेशनल जोन में, हम यूथ आइकन और सफल उद्यमी अनन्या बिरला पर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।
1: बिल्कुल सीमा, और अगर हम आगे बढ़ेंगे, आगे का सेगमेंट की अगर हम बात करें, तो फन फैक्ट्स में विभिन्न प्रकार के फोबियाज, विभिन्न प्रकार के जो डर होते हैं ना, फोबिया जिसे कहते हैं, उसके बारे में हम श्रोताओं को डिटेल में जानकारी देंगे, है ना।
0: ये भी दिलचस्प जानकारी होगी रोचक तथ्यों के अंतर्गत।
1: बिल्कुल, और एक कविता पाठ भी हम आपको सुनवाएंगे शकुंतला सरूपरिया जी का, तो जरूर आप सुनिएगा आज का हमारा नमस्कार उदयपुर। पूरे फोल्डर में हमारे साथ बने रहिएगा। भोर भय चलिए।

0: पड़ रही है और आगे छुट्टियां भी होने वाली है, तो ग्रीष्मकालीन अवकाश जब आएगा ना, तो बहुत सारे टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, जो अपने शहर के लोग हैं, वो दूसरे शहर जाना चाहते हैं, घूमने घूमने जाना चाहते हैं या नानी घर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए ना उदयपुर से दिल्ली के रूट पर ट्रेनें चलाई जा रही है एक्स्ट्रा पैसेंजर्स को देखते हुए। तो यह ट्रेन उन यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक होगी जो वाया अजमेर जयपुर होकर दिल्ली जाना चाहते हैं। तो श्रोताओं, अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो ज़रूर ऑनलाइन रेलवे की से जानकारी ले लीजिए कि कौन सी ट्रेन कब और कहाँ वाया इस रूट पर चलते हुए दिल्ली जाएगी। और एक और खबर है जो कि बहुत ही खुशी की खबर है कि सीनियर तैराकी टीम का चयन हुआ है। जिला तैराकी संघ की ओर से जिला स्तरीय सीनियर तैराकी दल का चयन 16 व 17 मई को महाराणा प्रताप खेलगांव के तरणताल पर होगा। तो इसके लिए तैयारियां चल रही हैं और जो भी इसमें चाहना चाहते हैं, तैराकी के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप संबंधित एजेंसीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अब आगे हम आईपीएल अपडेट दें, उससे पहले कुछ सुने।

0: 13 मई बुधवार का दिन सुबह के 8:36 और अब हम आपको उदयपुर वालों को उदयपुर की स्थानीय खबरें बता दें।
1: बिल्कुल, स्थानीय खबरों में सबसे पहले हम खबर देते हैं कविता आकाशवाणी उदयपुर की कि आकाशवाणी उदयपुर प्रस्तुत करने जा रहा है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर एक लाइव कॉन्सर्ट AIR@90music concert। कलाकार इसमें होंगे सुगम संगीत के गजल गायक डॉक्टर देवेंद्र हिरण और डॉक्टर पामिल मोदी। इसमें संगीतकार होंगे विजय कुमार धांधड़ा, सारंगी पर हारमोनियम पर मीठालाल वर्मा, संतूर पर भूपेंद्र गंधर्व और तबले पर संगत करेंगे संजय वर्मा। ये कॉन्सर्ट 15 मई 2026 शुक्रवार की शाम 7:30 आयोजित होगा। स्थान रहेगा बप्पा रावल सभागार, MLSU अतिथिगृह, MLSU विश्वविद्यालय परिसर, उदयपुर। इस लाइव कॉन्सर्ट के आमंत्रण पत्र आप चेतक सर्कल मोहता पार्क स्थित आकाशवाणी उदयपुर से प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो ये तो हो गई हमारे आकाशवाणी की जानकारी। जरूर श्रोताओं, आपको ये लाइव कॉन्सर्ट देखने जाना चाहिए। और अब हम देखो, अब इन दिनों गर्मी बहुत

0: तो श्रोताओं, आईपीएल में तो अभी बहुत रोमांच बढ़ गया है। कल का मैच देखा था आपने?
1: नहीं देखा? जी हाँ, हमने देखा था। अगर नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद वाले उस मैच में गुजरात ने बड़ी बड़ी बड़ी जीत दर्ज की है। ये तो हम सुबह से सुन ही रहे हैं, लेकिन क्या खास बात थी इस बड़े मैच में गुजरात की बड़ी जीत? गुजरात टाइटंस ने पूरे मैच में है ना सीमा, शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। बल्लेबाजों ने तो तेज रन बनाकर एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, और फिर उनके बॉलर्स ने, गेंदबाजों ने हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और उन्हें बहुत ही जल्दी प्रेशर में ले आए। और एसआरएच की टीम जो है लगातार विकेट खोती रही, और इसी यही वजह रहे कि लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकी। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा क्या रहा इस मैच का, बीच के ओवरों में ना इनके लगातार विकेट गिर रहे थे, और गुजरात की गेंदबाजी जो है वो बहुत ही कसी हुई, और लाइन और लेंथ उनकी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। यही वजह रहा कि मैच पूरी तरह से एक तरफा बन गया।
2: बिल्कुल, तो यही हम कह सकते हैं कि हैदराबाद जहां सबसे छोटे स्कोर पर ढेर हुआ, वहीं गुजरात लगातार पांचवी जीत से शीर्ष पर अपने बेस्ट रिकॉर्ड की बराबरी बनाए हुए हैं। और आज की बात करें तो आज पिछले दो चैंपियंस बेंगलुरु और कोलकाता रायपुर में भिड़ेंगे। तो ये आज आप में ये रोमांचक मैच आज का देख सकते हैं।
0: बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जो पॉइंट्स टेबल है उसमें भी उठा पटक चल रही है।
2: बिल्कुल,
0: तो ये तो हो गई आईपीएल की जानकारी।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: श्रोताओं, अब हम दो लेजेंड्स की बात करेंगे। आज की तारीख में हम उन्हें ज़रूर याद करेंगे। आज है 13 मई की तारीख और आज हम याद कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान स्वतंत्रता सेनानी और सम्मानित राजनेता फखरुद्दीन अली अहमद जी को, जिनकी की आज जयंती है। हमें लोकतंत्र और राष्ट्र सेवा की वो प्रेरणा देती हैं। 13 मई 1905 को जन्मे और 24 अगस्त 1974 को राष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ ली थी। राष्ट्र सेवा, सादगी और संविधान के प्रति समर्पण सीमा में बहुत ही सरल स्वभाव और सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे। उनके कार्यकाल में 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ था। आप आचार विचार और संस्कार से आदर्शवादी इंसान थे और उनकी स्मृति को शाश्वत रखने के लिए भारत सरकार ने ना डाक टिकट भी जारी किया था। बेशक इंसान सदैव के लिए संसार में नहीं रहता, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद जैसे राष्ट्रभक्त कभी भी विस्मृत नहीं किए जा सकते। राष्ट्र उन्हें व उनके योगदान को सदैव याद रखेगा।
2: बिल्कुल, और उन्हीं के साथ साथ अब हम

0: याद करते हैं साहित्यकार आर के नारायण को। उनकी आज पुण्यतिथि है और उनका नाम आते ही याद आते हैं मालगुड़ी डेज और द गाइड सरीखे साहित्य जो कालजयी हुए, उनके द्वारा लिखे गए और उन पर सीरियल भी बने जो काफ़ी मशहूर हुए और उनकी रचनाओं ने भारतीय अंग्रेजी साहित्य को वैश्विक पहचान दिलाई। प्रमुख कृतियों का जिक्र करें तो दक्षिण भारत के काल्पनिक शहर मालगुड़ी पर आधारित कई कहानियां और उपन्यास उनके द्वारा जो लिखे गए थे काफ़ी मशहूर हुए। वहीं 1935 में स्वार्थ एंड फ्रेंड्स, वहीं 1958 में द गाइड। उनकी सरल शैली और सूक्ष्म चित्रण आज भी पाठकों को प्रेरित करते हैं, जिनकी रचनाओं ने दुनिया भर के पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और छोटे शहरों के जीवन का की लय का जीवंत रूप देने की जो उनकी कुशलता है वो वाकई देखते ही बनती है और उसे उस वक्त जितना पसंद किया गया आज की पीढ़ी भी उतना ही पसंद करती है उनकी लेखनी को।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि तुमने उल्लेख किया कि वो एक बहुत ही अच्छे सफल राइटर थे, तो उन्हीं की के द्वारा लिखित जो नॉवल थी गाइड, उस पर एक फिल्म भी बनी, तो उस
0: उसी को सुनते हैं। बिल्कुल।

0: श्रोताओं नमस्कार, उदयपुर कार्यक्रम चल रहा है और आज है बुधवार का दिन और आज हम बात करते हैं यूथ आइकन की।
1: बिल्कुल इंस्पिरेशनल जोन है ये और उसमें आज यूथ आइकन और सफल उद्यमी अनन्या बिरला के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं और ये वो शख्सियत हैं जो एक गायक भी हैं और गीतकारों के रूप में भी अपनी पहचान रखती हैं।
0: बिल्कुल, सपनों को हौसलों से उड़ान देती हैं, हर मुश्किल को मुस्कान से मात देती हैं, युवा सोच और मेहनत की पहचान है वो अनन्या बिरला, नई पीढ़ी को नई राह देती है।
1: भारतीय उद्योगपति और भारत के सबसे बड़े समूह आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला की बेटी होते हुए भी अपनी एक अदद पहचान रखती हैं और वो अपने हुनर के जरिए। 2016 में अनन्या ने यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया के तहत अपना पहला एकल लिव इन द लाइफ जारी किया, वहीं दूसरा एकल मैन टू बी 2017 में जारी किया, जिसे 2017 में IMI द्वारा प्लेटिनम प्रमाणित किया गया था।
0: बिल्कुल, भारत के युवा उद्यमी, सिंगर और सोशल वर्कर, मेहनत और नए विचारों से इसने अपना करियर बनाया है, अपनी सोच को आगे बढ़ाती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, म्यूजिक, फैशन और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे उन्होंने बहुत ही सफल योगदान दिया है और जैसे फील्ड में लगातार हर फील्ड में इन फील्ड्स में ना वो युवाओं को प्रेरित कर रही हैं और 17 साल की उम्र में ही इन्होंने स्वतंत्र माइक्रोफिन नामक कंपनी की शुरुआत की थी जो रूरल एरियाज में महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम करती हैं, जिससे हजारों महिलाओं को रोजगार और व्यवसाय के अवसर मिलते हैं। व्यवसाय के साथ साथ अनन्या, जैसा कि तुमने कहा, संगीत की दुनिया में भी अपना एक मुकाम बनाया है और अनन्या के लेटेस्ट और सबसे पॉपुलर कह सकते हैं टॉक ऑफ द टाउन है, बिजनेस कम्युनिटी को इस सब में उसकी बातें हो रही है उनकी, और वो है RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कहते हैं ना फ्रेंचाइजी है, ओनरशिप ली है। IPL के इतिहास में सबसे बड़ी डील्स वाली फ्रेंचाइजी, 16,600 करोड़ में इसको खरीदा गया है। और हालांकि टीम के चेयरमैन जो है ना उनके भाई आर्यमन विक्रम बिरला हैं, लेकिन अनन्या लगातार RCB से जुड़ी रहती हैं और मैचेस, सोशल मीडिया, ब्रांड प्रमोशंस में एक्टिव रहती हैं। डेफिनेटली RCB से जुड़ाव का उनको अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल बिजनेस वेंचर के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड ब्रांडिंग तीनों है।
1: बिल्कुल, और एक अच्छा सा गाना।
0: बिल्कुल, तो अनन्या बिरला की हमने बात की श्रोताओं और यंग श्रोता, यंगस्टर्स जो भी हमें सुन रहे हैं, इस तरह की युवा शख्सियत से जरूर प्रेरणा लेंगे।

0: श्रोताओं आप सुन रहे हैं नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम, और नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में हम अभी एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, क्योंकि हमें सुनना है प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से, और 9:10 पर हम और आप फिर साथ साथ होंगे। और साथ ही 9:10 पर आप ज़रूर सुनिए कविता पाठ आकाशवाणी के 90 साल के उपलक्ष में शकुंतला सरूपुरिया जी से। अभी हम जुड़ेंगे हमारे जयपुर केंद्र से समाचार के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार, बाड़मेर जैसलमेर और फलौदी के लिए आज प्रचंड गर्मी और लू का रेड अलर्ट। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अधिकतम तापमान 48 डिग्री के पार। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के बारे में सीबीआई ने मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया, अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की। और कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्य कर्मी निलंबित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का असर है। प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़ों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और अधिकतम तापमान कल 48 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं फलौदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में दिन का पारा 45 डिग्री के पार रहा। प्रदेश में दिन के तापमान में 6 डिग्री और रात के पारे में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और जालौर में रात का पारा 30 डिग्री के पार रहा। राजधानी जयपुर में भी गर्मी का प्रकोप तेज हो गया है। दिन के पारे में 3 डिग्री और रात के तापमान में करीब 1 डिग्री का उछाल रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान में पारे में और बढ़ोतरी के आसार हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हीट वेव के साथ साथ रातें भी काफी गर्म रहने की संभावना है।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर रात का पारा भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन गर्मी के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राज्य में कल कहीं कहीं हल्की बरसात भी हुई। अलवर के कोटकासिम में 1.5 सेंटीमीटर

0: मीटर पानी बरसा। भरतपुर जिले में आंधी के साथ जोरदार बरसात हुई, वहीं कई गांवों में ओले भी गिरे। आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में धूल भरी हवाएं चलने के आसार हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के संबंध में सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। इसमें देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के बारे में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। देश में नासिक सहित अन्य स्थानों से भी पेपर लीक करने में शामिल साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच सीबीआई टीम जांच के लिए कल जयपुर पहुंची। इन्होंने राजस्थान एसओजी की ओर से हिरासत में लिए गए करीब 20 लोगों से पूछताछ की। इससे पहले सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार को भी देहरादून से पकड़ा गया था। एसओजी के आईजी अजयपाल लांबा ने बताया कि मामले की गहन जांच के लिए एसओजी सीबीआई का पूरा सहयोग कर रही है।
1: सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया है। सीबीआई की टीम एसओजी से संपर्क में है। उनकी टीम के जो भी सदस्य हैं, उनको अब तक की पुलिस ने जो पूछताछ करी है उस पूछताछ से उनको अवगत करा दिया गया है और पूछताछ से जो चीजें सामने आई उसमें कई लोगों से पूछताछ के पश्चात कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो इस परीक्षा पेपर के गिरोह के रूप में शामिल होने की संभावना है। उन तमाम संदिग्ध व्यक्ति जो हैं उन व्यक्तियों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ शुरू करी है। पूछताछ के पश्चात इन व्यक्तियों का जो इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा उस पर आगे की कार्रवाई सीबीआई के द्वारा ही की जाएगी।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: नीट परीक्षा कथित पेपर लीक के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस की ओर से जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोटा स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नवा दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना भी समारोह में मौजूद रहेंगे। विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉ. विमला डोकवाल ने बताया कि इस साल कृषि, उद्यानिकी और वानिकी संकायों के कुल 358 अभ्यर्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इनमें स्नातक के 318, स्नातकोत्तर के 34 और पीएचडी के 6 शोधार्थी शामिल हैं। विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले 11 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से नवाजा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया है। उन्होंने अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या भी कम करने का निर्णय किया है। साथ ही मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी कम वाहनों के इस्तेमाल में किफायत बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पेट्रोल डीजल की गैर जरूरी खपत कम करने की बात कही है। सभी विभागों को सरकारी कार्यक्रमों, दौरों और वीआईपी मूवमेंट तथा प्रोटोकॉल के नाम पर अतिरिक्त गाड़ियों की संस्कृति खत्म करने को कहा गया है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल बचत की देशव्यापी अपील की थी। ज्ञान भारतम मिशन के तहत राजस्थान में अब तक 16.5 लाख से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है, जो देश में सबसे ज्यादा है। कल जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि कला संस्कृति विभाग और राज्य के विशेषज्ञों की सहभागिता से पांडुलिपि सर्वेक्षण का काम व्यापक स्तर पर किया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न पुराणों, वेदों और अन्य ग्रंथों

0: संबंधित महत्वपूर्ण पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण किया गया। उन्होंने बताया कि इन दस्तावेज की श्रेणीबद्ध सूची तैयार की जा रही है। कोटा के न्यू मेडिकल अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में चिकित्सा विभाग ने लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्य कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें कॉलेज के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग के आचार्य डॉ. बद्रीलाल और सह आचार्य डॉ. खुशबू मीणा शामिल है। वहीं कॉलेज की नर्सिंग अधिकारी मीनाक्षी मीणा और जेके लोन अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी पिंकी खींची को भी निलंबित किया गया है। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा और न्यू मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण अभियान में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जैसलमेर के ब्रीडिंग सेंटर में 2 और नन्हे गोडावण का आगमन हुआ है। इसके साथ ही कृत्रिम प्रजनन केंद्रों में गोडावणों का कुल आंकड़ा 86 पर पहुंच गया है। 10 मई को रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में और 11 मई को सम सेंटर में AI तकनीक के माध्यम से 2 चूजों ने जन्म लिया। अब तक इस तकनीक की मदद से 26 गोडावण जन्म ले चुके हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की कुल 1320 मेगावाट क्षमता की 2 सुपर क्रिटिकल इकाइयों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये बेहतरीन प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अंतिम तिमाही में किया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि दोनों सुपर क्रिटिकल इकाइयों से 95% से अधिक बिजली उत्पादन उपलब्धता हासिल हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी के लिए आज प्रचंड गर्मी और लू का रेड अलर्ट। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अधिकतम तापमान 48 डिग्री के पार। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के बारे में CBI ने मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया, अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की। और कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्य कर्मी निलंबित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप आकाशवाणी उदयपुर के संग हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस सफ़र के राही हैं और आप भी हमारे संग इस सफ़र में साथ दे रहे हैं, है ना?
2: बिल्कुल, फिर से शुरुआत कर रहे हैं हम दोनों, मैं डॉक्टर सीमा और कविता, और गाना तो साथ है ही।

0: आप सुन रहे हैं वेडनेसडे मिड वीक वाइब्स का एक खास सेगमेंट फन फैक्ट्स, जहां हम बातें कर रहे हैं, हम और सीमा आपके साथ साझा कर रहे हैं कि ऐसा टॉपिक जो सुनने में साधारण लगता है सीमा, लेकिन कई लोगों की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये रोचक तथ्य आज का जो हमने विषय लिया है वो है विभिन्न प्रकार के फोबिया।
0: बिल्कुल।
1: फोबिया का सीधे

0: तौर पर अर्थ देखें तो हम कहीं ना कहीं समझते हैं, या तो खुद या अपने आस पड़ोस में कहीं भी कोई ना कोई ऐसा नजर आ जाता है जो इस चीज से ग्रसित है।
1: सरल शब्द क्या हुआ?
0: सरल शब्द ये कहें कि हाँ डर, बिल्कुल सरल एक एक वर्ड में कहा जाए तो डर। और ये किसी स्थान, स्थिति, वस्तु या गतिविधि के प्रति अतार्किक अत्यधिक और निरंतर भय उत्पन्न होना, और ऐसा भय जो हमारी रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर दे, वही फोबिया है।
1: बिल्कुल, हम दूसरे की क्या बात करें, हमारे खुद में भी बहुत सारे के फोबियाज होते हैं। हम बहुत चीज़ों से घबरा जाते हैं और खतरनाक, जैसे कुछ होता है ना, जैसे एकदम डरना, अचानक से डर जाना, जैसे
0: डर का एक्सट्रीम लेवल।
1: बहुत अलग अलग तरह के फोबियाज होते हैं, इसकी जानकारी श्रोताओं को दे दें। एक होता है एक्रोफोबिया, ये होता है ऊंचाई से डर को कहा जाता है। कुछ लोग है ना जो ऊंची बिल्डिंग्स में, पहाड़ में, इनफैक्ट हाई राइज बिल्डिंग्स के बालकनी में खड़े होने से भी डरते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक जैसे सिचुएशन में वो एकदम घबरा जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं जब वो ऊपर पहाड़ पर होते हैं, उन्हें डर लगता है
0: ऊंचाई वाली जगह से। बिल्कुल, नीचे देखने से भी वो डरते हैं। ऐसा ही एक फोबिया है एगोराफोबिया। इसमें इंसान भीड़भाड़ वाली जगह पर जाना पसंद नहीं करता, उससे दूरी बनाए रखना उसे अच्छा लगता है। वो उसमें जाते ही खुद को बहुत असहसा महसूस करता है, उसे लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा।
1: एक फोबिया होता है ऑफिडिफोबिया, है ना, या रेप्टाइल्स जैसे सांप, छिपकली वगैरह से डर आता है। इसमें तो भाई हम भी बहुत डरते हैं, अगर छिपकली दिख गई तो भाई उस रूम में भी नहीं घुसेंगे,
0: नहीं जाएंगे।
1: छोटी सी मकड़ी, कॉकरोच भी बहुत बड़ा तनाव पैदा कर देती है।
0: सही है।
1: एक होता है एक्वाफोबिया, पानी से डर, जैसे गहरे पानी में जाने से या तैरने से डर लगता है। ये भी बहुत कॉमन है, हमें देखने को मिलता है कि तैरने, स्विमिंग करने से लोग बाग डरते हैं।
0: बिल्कुल सही। और वही एक होता है सोशल फोबिया, जो कि सामाजिक मेल जोल या लोगों के सामने बोलने से डरना, स्टेज फोबिया भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल कर सकते हैं हम। तो ये भी एक तरह का फोबिया
1: है। होता है क्लास्ट्रोफोबिया, छोटे या बंद कमरे में डर लगना, लिफ्ट में, बंद जगह में लोग बहुत ही बेचैनी महसूस करते हैं और बहुत असहज हो जाते हैं।
0: वही जैसे ऊंचाई की बात करी, वैसे ही एक हवाई यात्रा या उड़ने का जो फोबिया होता है, उसका जो डर होता है वो है एरोफोबिया।
1: बिल्कुल। एक होता है निक्टोफोबिया, अंधेरे से डर लगना, रात या अंधेरे कमरे में अकेले रहना, ये इससे भी जो है ना लोग बाग बहुत घबराते हैं। दोस्तों, फोबिया कोई कमजोरी नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड है ना। अगर आपने अपने दिमाग पर काबू कर लिया तो आप इस तरह के डर से उभर पाएंगे, जिसका इलाज किस तरह से संभव है सीमा, थेरेपी से, काउंसलिंग से और सही गाइडेंस से। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो ऐसे डर से गुजर रहा है, तो आप उसका मजाक ना उड़ाएं बल्कि उसका साथ दें।
0: बिल्कुल साथ दें। और ये CBT जो थेरेपी कहा जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और दवाओं का एक संयोजन किया जाता है, उसके थ्रू उनका इलाज किया जाता है।
1: तो हम डर से आगे बढ़ते हैं, एक पॉजिटिव नोट के साथ इस बात को यहीं विराम देंगे कि डर को मन में जगह न दें, हिम्मत से हर राह चुनें, धीरे धीरे सामना करें, अपने विश्वास को मजबूत करें, सही सलाह और साथ लेकर मन की घबराहट दूर करें, फोबिया को हरा कर जीवन को फिर से खुलकर जिए। और फिर ऐसा ना कहें कि बच्चे की जान लोगे क्या।

0: नमस्कार, उदयपुर कार्यक्रम चल रहा है श्रोताओं, और आप आकाशवाणी के संग जुड़े रहते हैं। आकाशवाणी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो ये भी जान जाइए कि आकाशवाणी अपने 90वें साल में चल रही है। 90 साल उसे पूरे कर लिए हैं। बहुत ही हेल्दी मनोरंजन है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ध्येय पर हम चलते हैं। तो इस दिनों अब इसका सेलिब्रेशन चल रहा है,
1: बिल्कुल
0: है? तो आकाशवाणी उदयपुर में भी हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं, और इस ये आगे आपको सुनने को आप मिल को मिलेगा ही कि हम क्या कुछ करेंगे। अभी आप सुनाएंगे एक कविता पाठ आकाशवाणी उदय के 90 वर्ष के उपलक्ष में शकुंतला सरूपरिया जी के।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में मैंने ये रचना लिखी है। आकाशवाणी जो राष्ट्र की एकता और अखंडता का सुंदर मठ है, देश की मूल्य संस्कृति और संस्कारों का पनघट है, आकाशवाणी को समर्पित है मेरी ये पहली नज्म। जो सबके

रे। राष्ट्र एकता और अखंडता का ये मठ है प्यारा, मूल्य संस्कृति और संस्कारों का ये पनघट न्यारा। जो लोकतंत्र सिर ताज धरे आशा, सपनों को बाज करे मैं पंख लगा कर सरगम के आकाशवाणी में आई रे। मैं मन की मधुर तरंगों को भी स्वर में भर के लाई रे। और ये हर एक के हित में कार्य करती है आकाशवाणी। नर नारी आबाल वृद्ध और वंचित के हित साधे, मनोरंजन संग शिक्षा ज्ञान और सूचना स्वर में बांधे। कल्याण प्रगति के काज करे जो शांति सत्य से सम

रे जन जन और सत्ता नीति निर्धारक के मत कसे तू श्रेष्ठ विचारों की है प्रसारक पुण्य की वर्षा है तू आध्यात्म भक्ति में राज करे जन जन को जो हम राज करे मैं पंख लगा कर आशा के आकाशवाणी में आई रे मैं हृदय हृदय को गीतों से आलोकित करने आई रे। और आखिरी बंद है इस नज्म का, हर भाषा बोली को दुलारे लोक रंग के पटल से माटी की सुर भी पहुंचाती अंबर तक ये

से हर सैनिक को जांबाज करे, कृषकों के लिए सुराज करे, मैं पंख लगा कर प्रेरणा के, मैं पंख लगा कर प्रेरणा के आकाशवाणी में आई, मैं लोक धुनों की पायल भी छन छनती छन छन बजती ले आई रे, जो सबके दिलों पे राज करे, जिस पर भारत भी नाज करे, मैं पंख लगा कर वाणी के आकाशवाणी में आई रे, मैं पंख लगा के बधाइयों के आकाशवाणी में आई रे, आकाशवाणी में आई रे। मेरी दूसरी रचना है आकाशवाणी को फिर से समर्पित, ये गीत रचना है। आकाशवाणी जो भारत की धड़कन है, ये सूरज है जिससे उजाला मिलता है, ये जन जन की आशा का अभिलाषा का कुल है, जहाँ स्वर ही स्वर का प्रसार मिलता है। सुनिएगा।

सूरज है जिससे उजारा मिला। और अलग अलग तरह के बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आकाशवाणी के द्वारा हमेशा प्रसारित होते रहते हैं, उन्हीं के बारे में मैंने ये बंद कहा है। हनित भोर होते ही भक्ति सुधा से भजन और मंत्रों से कर देती मनतर। लिमीरा के पद ओ कबीरा की साखी परो

मणि है भारत की धड़कन, ये सूरज है जिससे उजारा मिला। और आकाशवाणी को समर्पित है अंतिम बंद इस गीत का। ये प्रौद्योगिकी युग में धरोहर पुरानी है नभ से।

है सौभाग्य हर क्षण सहारा मिला, है सौभाग्य हर क्षण सहारा मिला, ये आकाशवाणी है भा

0: जहाँ स्वर ही स्वर का पसारा मिला, जहाँ स्वर ही स्वर का पसारा मिला।
1: अंतस की वाणी आकाशवाणी, अभी कविता पाठ आपने सुना शकुंतला सरुप्रिया जी से। तो श्रोताओं, अब हो गया है नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम का वक्त यहीं संपन्न। नमस्कार उदयपुर से आप कहते हैं अलविदा। यादों में बसेंगे इसके हर मीठे अंदाज आपके, साथ बिताए पल रहेंगे दिल के करीब हमेशा आपके, फिर मिलेंगे नई शुरुआत में, यही है विश्वास हमारा।
2: बिल्कुल, और इसी के साथ अब लेते हैं इजाज़त। नमस्कार उदयपुर से, मैं डॉक्टर सीमा
1: और मैं कविता
2: कहते हैं आपसे नमस्कार उदयपुर।
1: नमस्कार।

यह आकाशवाणी उदयपुर है। श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे हमारा दैनिक मनोरंजन व जानकारी से भरपूर कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। अब सुबह के 9:31 हो रहे हैं। हम आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग बाई NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानी।

0: मानिकपुरी, मिलवदास, जयदास, देवेशदास, धनवंतीनबाई और मोतीमबाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।

0: और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: तो श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
1: जी,
0: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
0: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
0: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
0: जी,
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
0: तो श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
0: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
1: जी
0: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
0: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
0: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी
0: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
0: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
0: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
1: जी
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
0: जी
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: अकर बकर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।

0: तेरी बारी है, तेरी।
1: तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
2: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
1: तो कहानी सुना दो भाई।
2: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
1: अच्छी कहानी थी। भाई कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
2: हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
1: हाँ चलो चलो, वहाँ
2: चलो,
1: पे पानी होगा।
2: चलते
3: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
4: कौन है
1: दीदी?
4: कौन है
1: दीदी?
2: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
1: अम्मा जी हमें बहुत प्यास लगी है,
2: हम थोड़ा पानी पी लें?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
2: हाँ
1: हाँ, बहुत ठंडा पानी था।
2: लेकिन अम्मा आप कौन है?
5: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
1: कौन है आप?
5: नहीं समझे?
1: नहीं।
5: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: पंखा जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम
1: अब गर्मी अम्मा है।
2: बिल्कुल ठीक समझी, मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
2: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
2: हाँ
0: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
2: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
0: चलो
3: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
2: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
3: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
2: मेरे

0: मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
0: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
0: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
2: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
2: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल?
0: नहीं समझी?
1: नहीं।
0: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ,
2: आ, आ,
3: तुम तो बड़ी समझदार हो।
4: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो,
3: आइसक्रीम। बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना।
1: अरे कोई खाने को दे तब ना।
3: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
1: लाओ अम्मा,
5: लाओ अम्मा,
3: लो।
1: घर भी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
3: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close.

0: to us. I doubt if you were able to see anything.
1: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो है। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो।
4: ए! कौन हो तुम? रुका, रुका! जाओ वहीं रुक जाओ, रुका!
3: कौन हो तुम?
5: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
3: क्या सूचना?
5: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
3: अच्छा यहीं रुको, चलो कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
5: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
5: सर हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
5: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
5: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा है।
0: क्या?
5: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
0: कितने लोग रहे होंगे?
5: सब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
5: साहब मेरा गांव है घरकोन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
0: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
1: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत

0: साक्षात शव वापस भेजे।
1: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
0: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
1: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
0: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
1: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
0: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
2: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
3: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
2: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
4: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
2: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
5: जी, यस सर।
2: ये मेज के चारों ओर।
5: जी सर।
3: उधर से।
2: हाँ। जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
5: जी सर।
2: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
5: जी सर।
2: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
5: जी सर।
2: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
3: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
6: यस सर।
2: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
5: जी जी सर।
2: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाए। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
5: सर, जी सर।
2: कोई शक?
5: नो सर। सर,
2: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
6: यस सर।
3: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
7: धीमे बोलो, धीमे।
3: जी,
7: उन्हें पता ना चल जाए।
3: जी सर।
7: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
3: जी।
7: और हथियारों के साथ

0: अपनी पोजीशन ले लेंगे,
1: ठीक है सर।
0: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक खाद गोला फेंकना।
1: जी सर। जी सर।
0: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
1: जी सर।
0: ठीक है, आगे बढ़ो, बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे। धीरे
1: धीरे धीरे
2: से बाहर आ रहे हैं।
3: फायर!

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ बातें कुछ गीत, जी हाँ, ये कार्यक्रम अब आप सुनेंगे। फिल्म संगीत है इसमें और हमारी बातें भी हैं जो कि रोचक और जानकारी भरी होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: कुछ बातें हैं दिल से कहने को, कुछ गीत हैं आस सुनाने को। मंच सजा लिया है हमने सुरों का, इस रेडियो में आवाज बढ़ा लेने को।

तो श्रोताओं, ये गीत हमने लिया तू झूठी मैं मक्कार, अरिजीत सिंह और चरण की आवाज़ में। इस फिल्म का ये मस्ती भरा ट्रैक अभी आपने सुना। और बातें मौसम की करनी चाहिए, है ना? कितना गर्म मौसम हो रहा है, अच्छी खासी मई के महीने में तो गर्मी होगी ही ना। लू का असर भी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है और तापमान जो है वो भी 40 से ऊपर पहुँच चुका है। तो इस गर्मी में बहुत ही अच्छा अपना ख्याल रखिए, खूब पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और खाना भी ऐसा खाइए जो आसानी से इस मौसम में पचे। हैवी तला हुआ खाना या बासी खाना या बाहर का खाना, ये सब तो अभी बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। तो इस गर्मी के मौसम में क्या करना है, ध्यान रखिए, वरना फीवर हो जाएगा, जैसे कि इन्हें इश्क का फीवर हो रहा है।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम चल रहा है। आईपीएल का मज़ा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अब तो बिल्कुल प्लेऑफ का समय आ गया है और जो टीम आगे आना चाहती है ना, वो अपनी जद्दोजहद में लगी हुई है। स्कोर कार्ड, स्कोर जो अंक तालिका है, स्कोर टेबल हम देख रहे हैं और हम भी जिन टीमों को फेवर कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं किसी तरह से वो भी ऊपर आ जाए, है ना। जैसे कि हम राजस्थान के हैं तो ऑब्वियसली हम राजस्थान की टीम को चाहते हैं कि राजस्थान की टीम जीते और किसी तरह से फर्स्ट फोर पे तो उनका नाम आ ही जाए। तो फिर क्या होगा, फिर आगे का तो देखा जाएगा जो होगा, है ना। तो इस तरह से आईपीएल में अपनी दिलचस्पी बनाए रख रहे हैं हम सभी, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प मैचेस चल रहे हैं। और देखिए ना, कल का मैच ही कितना दिलचस्प था। कोई नहीं जानता था कि गुजरात की टीम हैदराबाद के जैसे वेटरन टीम को, जो कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे फॉर्म में हैं उनके सभी खिलाड़ी, इतनी बड़ी जीत दर्ज करेंगे उनके खिलाफ। तो कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, एनीथिंग कैन हैपन, है ना।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कुछ बातें कुछ गीत ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और बातें तो अभी जब इतनी गर्मी पड़ रही है तो गर्मी से कैसे बचा जाए, क्या क्या उपाय किया जाए, इस पर जरूर होनी चाहिए, है ना। तो सुबह और शाम आप जरूर टहल सकते हैं लेकिन धूप की लाई में घर से मत निकलिए, है ना। एक्सरसाइज जो है वो भी बहुत ब्रिस्क नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा जिमिंग नहीं करनी चाहिए, हल्की हल्की योग एंड हल्की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। स्विमिंग कैन बी ए वेरी गुड ऑप्शन, यस स्विमिंग जो है तैराकी वो सबसे अच्छा विकल्प है गर्मियों में। घर के अंदर इंडोर गेम्स खेलें, जैसे कि हम खेला करते थे ना लूडो कैरम चेस, बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ साथ में भी अगर बच्चों की छुट्टियां हैं तो बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है, ताश भी खेल सकते हैं ना, जो हम घर में ताश खेला करते थे वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया गेम्स होते थे इंटरेस्टिंग, वो आप खेल सकते हैं। और परिवार के साथ संग बैठ के एक ही कमरे में आराम से कूलर एसी चला के, ताकि बिजली का भी बचत हो, अपन इस तरह से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। किताबें पढ़ना या कुछ नया सीखना ये भी बहुत ही अच्छा रहता है इस भरी गर्मी में समय स्पेंड करना हो तो इस बात इन बातों का ध्यान रखिए। और ए आर रहमान और श्रीनिधि वेंकटेश की आवाज़ में फिल्म ओके जानो से सुनिए ये गीत।

कुछ बातें कुछ गीत, ये कार्यक्रम चल रहा है आकाशवाणी उदयपुर के संग हैं आप। और एक अच्छी सी जानकारी आपके साथ साझा कर ले, आप तो ये सुन ही रहे हैं इन दिनों कि आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर चुका है और बहुत सारी सेलिब्रेशंस ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं। सभी आकाशवाणी केंद्रों पर इसकी खुशियाँ मनाई जा रही है और 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आकाशवाणी उदयपुर में भी 15 मई, आज 13 हो गई है, 15 मई शुक्रवार को एक लाइव म्यूज़िक कॉन्सर्ट का आयोजन होगा। इसका समय रहेगा 7:30 पर, स्थान बप्पा रावल के ऑडिटोरियम, MLSU गेस्ट हाउस, MLSU यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आपको आना है। और अगर आप इसे आना चाहते हैं, इसे अटेंड करना चाहते हैं, तो आप आमंत्रण पत्र ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं।

राउडी राठौर फिल्म का ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया। और अब आगे बढ़ते हैं कुछ बातें कुछ गीत में। अरिजीत सिंह और समीरा कोप्पिकर को सुनेंगे हेट स्टोरी। जी हाँ, इस फिल्म हेट स्टोरी 2 फिल्म से।

तो श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। सुबह के ठीक 10:35 हुए हैं और फिल्म संगीत में अब आगे बढ़ते हैं और आपको गाना सुनवाएंगे हम फिल्म बदलापुर का, आतिफ असलम की आवाज़ में।

श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और एक रोचक तथ्य आपके साथ साझा करूं कि ऑफिस में या कहीं भी कार्यस्थल में जहां पर भी आप होते हैं तो बहुत स्ट्रेस में होते हैं ना, तो कई बार क्या होता है बहुत चाय पीते हैं, बैक टू बैक चाय पी लिया और फिर साथ में अगर स्मोकिंग भी आप कर रहे हैं तो वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही घातक होता है। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के हिसाब से चाय और सिगरेट साथ पीने से कुछ देर के लिए ज़रूर अच्छा महसूस होता है, लेकिन लगातार ऐसा करने से फेफड़ों को नुकसान होता है, पेट की भी समस्याएं होती है, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, अपने अच्छे हैबिट्स अपनाएं ना, अच्छे हैबिट्स ऑलवेज इज़ फॉर गुड हेल्थ, है ना। तो ध्यान रखें अपना।

श्रोताओं, बाहर बहुत गर्मी है और अभी अभी स्वाति स्टूडियो में घुसी और बता भी रही है कि दीदी बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, तो गर्मी तो भाई है ही, धूप तेज़ निकली हुई है, सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखना है और धूप में तभी निकलना है जब बहुत ज़रूरी हो, और इस मौसम में खान पीन का भी बहुत ध्यान रखना है। देखिए एक स्टडी आई है, उसमें ये बताया गया है, एम्स के डॉक्टर्स ने बताया है ऐसा कि अगर लोगों का पेट कुछ खाते ही टाइट लगने लगे तो इसका कारण जो है ना ओवर ईटिंग नहीं बल्कि जल्दी जल्दी खाना हो सकता है। और ऐसा कहा कह रहे हैं वो लोग कि जल्दी जल्दी खाने से लोग ज़्यादा हवा निगल लेते हैं जिससे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गैस अधिक बनने लगती है। ऐसा आपको नहीं करना है, हमें भी नहीं करना है, धीरे धीरे चबा करके खाना खाना चाहिए, उससे डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और इस तरह की छोटी मोटी परेशानियां तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसे भी कहते हैं कि एक घास को अगर जब हम मुंह में खाते हैं ना तो उसे 36 बार चबाना चाहिए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं।

डंकी फिल्म का ये गीत आपने सुना, कुछ पाते कुछ गीते। ये कार्यक्रम फिल्म संगीत का, अब इसमें आखिरी गाना आपको सुनवाएंगे। बहुत ही मस्त गाना हमने आपके लिए निकाला है। गर्मी का मौसम है ना, हम बात भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, और गर्मी के मौसम में कुल्फी खाना किसे पसंद नहीं आता है ना। जैसे ही हमने नाम लिया, मन को थोड़ी ठंडक सी पहुँच गई होगी जरूर। गर्मी की तपती राहों में ठंडी सी राहत है, कुल्फी का हर एक स्वाद जैसे मीठी सी चाहत है। मटका हो या केसर पिस्ता, सबका अपना रंग, एक कुल्फी खाते ही खिल उठे दिल और हम और आप। तो श्रोताओं, ये सुनिए आप गाना और इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम से अब हमें दीजिए इजाजत। एंजॉय द सॉन्ग।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 11 बजे हैं और अब राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम, जो कि आपको बहुत पसंद है हमें ये पता है, लेकर एक बार फिर हम और आप साथ साथ हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे गीत आपको सुनवाएंगे, कहीं मत जाइए। आकाशवाणी उदयपुर के संगी बने रहिए।

मारो रंगीलो राजस्थान लोक सुरूरी पहचान राजस्थानी लोकगीत और कार्यक्रम गोखड़ा में आपको घनो घनो स्वागत करूं। मैं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कविता घनी घनी खम्मासा पहलो पहलो गीत हुनो सोनू कंवर की आवाज़ में।

0: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
0: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
0: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: आप सुन रहे हो लोक गीतारो कार्यक्रम गोखड़ा। गोखड़ा में काई गुंज रहे हो, माटी री खुशबू है, ढोलक री थाप है और लोक गीतारो मधुर एहसास है।

श्रोताओं, लोकगीता रो कार्यक्रम घोखड़ा आप सुन रहे हो। और अब आज रो इन प्रोग्राम में मैं बात करूँ रो सासू बहू रो रिश्तो। बहुत ही खूबसूरत यो रिश्तो हुआ है, तो आओ सुना यह गीत में काई कह रहा है।

माने सासू माँ मिली, आज रो राजस्थानी गीत जो अभी आपने सुना उमें गूंज रही रो अपनोपन मिठास, जहाँ सास बहू रो प्यार, ससुर जी रो मान और परिवार री खुशबू हर सुर में महसूस हो रही है।

0: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें,
3: मेल कीजिए sales@gmail.com यानी sales@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

0: AIR at 90.
1: तो श्रोताओं गोखड़ा कार्यक्रम रो आखिरी गीत आप हुनियो और मन दो इजाजत। उम्मीद है माटी रे खुशबू और लोक संगीत रा रंग आप सबने खूब भायो होगा इसी प्यार और अपनत्व के साथ। अब अनुमति ले रही हूँ, फिर मिलांगा नए गीता नई बात और नई उमंगा के साथ।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम गोखड़ा। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं? हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

श्रोताओं आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत का, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली गजल आपके रेडियो सेट पर पहुंच जाते हैं।

श्रोताओं, पंकज उदास की आवाज़ में अभी आपने सुनी ये खूबसूरत गज़ल। सुगम संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश पंकज उदास की ही आवाज़ में क्षमा चाहते हैं, इससे पहले जो गज़ल आपने सुनी वो थी मुकेश की आवाज़ में। और अब कार्यक्रम की आखिरी गज़ल आपकी खिदमत में पेश करते हैं पंकज उदास की आवाज़ में।

और इसी के साथ सुगम संगीत का ये सफर बस यहीं तक। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, दोपहर के 12 बज चुके हैं और आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं हम फिल्म संगीत। पहला गीत आपके लिए खूबसूरत फिल्म से

खूबसूरत फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ फिल्म संगीत का आगाज हम कर चुके हैं। दिलकश आवाजें थी कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का और प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं। रूप कुमार राठौड़ की आवाज में फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ओम शांति ओम फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं। फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम की अगली पेशकश आतिफ असलम की आवाज में फिल्म जहर से हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं। एंजॉय कीजिए फिल्म संगीत के इस सेगमेंट के इस नगमे को।

अलका याग्निक की दिलकश आवाज में फिल्म 1, 2 का 4 फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, आप ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम को हम आगे भी जारी रखेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

एक बार फिर से सभी सुनने वाले श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, और कार्यक्रम की शुरुआत फिर से करने से पहले आपको एक आवश्यक सूचना दे दें। आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आकाशवाणी उदयपुर 15 मई 2026 को एक लाइव म्यूजिक कंसर्ट का आयोजित करने जा रहा है। इस आयोजन का समय रहेगा 15 मई शुक्रवार शाम 7:30 पर, और इसका वेन्यू हम आपको बता दें, बप्पा रावल ऑडिटोरियम, MLSU गेस्ट हाउस, MLSU यूनिवर्सिटी कैंपस। तो इस लाइव म्यूजिक कंसर्ट को अटेंड करना ना भूलें, और इसके लिए आमंत्रण पत्र आप उदयपुर आकाशवाणी AIR के ऑफिस से स्वयं आकर ले सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो कार्यक्रम फिल्म संगीत की शुरुआत फिर से करते हैं इस गीत के साथ।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल स्वर में हमराज फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: 2 की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: असली नोट से क्यों खेल रहा है
5: ब्रो? ये फटा है।
6: सुन, फटे फटे आप पुराने नोट को
7: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
5: वाओ, नया नोट मिलेगा?
6: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल।

श्रोताओं आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर में गिरफ्तार फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम फिल्म संगीत का आखिरी और अगला नगमा आपके रेडियो सेट पर हम पहुंचाएंगे इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।

0: Akashwani at 90.
1: और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश सोनू निगम और श्रेया घोषाल की दिलकश आवाज में फिल्म क्रिश की। और इस गीत के साथ ही दीजिए इजाजत आपकी रेडियो दोस्त स्वाति को।

और इस गीत के साथ ही श्रोताओं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर राज्य की जल परियोजनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री श्री पाटिल के निवास पर हुई इस भेंट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस दौरान यमुना जल समझौते सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में इस परियोजना पर तेजी से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती से योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। इधर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया है। उन्होंने अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या भी कम करने का निर्णय किया है। मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी वाहनों के इस्तेमाल में किफायत बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सीबीआई टीम ने जयपुर में राजस्थान पुलिस के एसओजी की ओर से नीट पेपर लीक मामले में हिरासत में लिए गए 20 से अधिक लोगों से पूछताछ की। एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में भी सैकड़ों लोगों से पूछताछ की है। एसओजी के अनुसार कई लोगों ने कथित तौर पर पैसे लेकर गैस पेपर बेचे, जिनमें से कई प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए थे। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके बाद एसओजी ने आरपीएससी के ही एक लिपिक मानसिंह मीणा को गिरफ्तार किया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इसे करौली जिले की नादोती तहसील से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने जयपुर के 2 केंद्रों पर हुई परीक्षा डमी अभ्यर्थी से दिलवाई थी। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के लिए ये चेतावनी बताते हुए विभाग ने लोगों से दोपहर के समय घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। इस बीच बाड़मेर कल लगातार 3rd दिन भी देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां दिन का तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। फलौदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कोटा और झुंझुनू में भी झुलसाने वाली गर्मी का असर है। राजधानी जयपुर में कल अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री मापा गया। दिनभर धूप की तपिश और लू के कारण सड़कें और बाजार सूने नजर आए। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें योगाभ्यास करवाया जा रहा है। साथ ही योग के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में पाली जिले के कोलीबाड़ा के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में छात्र छात्राओं को योगासन करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। ये आज से प्रभावी हो गया है। सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। प्लेटिनम पर आयात शुल्क भी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है। इसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति इस साल 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनते हैं हमारी बहनों का अपना कार्यक्रम महिला जगत।

0: फूलों से सीखिए सबके जीवन में रंग भरना, पेड़ों से सीखिए ऊंचाइयों को छूना, कलियों से सीखिए मुस्कुरा के जीना, और कांटों से सीखिए कष्टों से उबरना, पत्तों से सीखिए मस्ती में झूमते रहना, और टहनियों से सीखिए दूसरों का सहारा देना।
1: क्या बात है अफरोज, सही में कितनी शानदार लाइनें हैं। वाकई में प्रकृति हमें अच्छी अच्छी आदतें सिखाती है, लेकिन फिर भी हम मनुष्य इसका अनुसरण नहीं करते हैं। तो लेकिन हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उसके पहले सबसे पहले हम सखियों को स्वागत है। सखियों आपका अपने कार्यक्रम महिला जगत में, और स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार नीलम और
0: अफरोज फारूकी का प्यार भरा नमस्कार।
1: तो अफरोज, जैसे आपने बहुत अच्छी लाइनें बोली है, वाकई प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ सिखाती है, और अगर इसके अनुकूल हम जीवन जिए तो कहते हैं ना कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती है ना, ये बहुत हद तक कम हो सकती है।
0: लेकिन बिल्कुल, और ये हमारा जो पर्यावरण है वो हमारा सुरक्षा कवच है, और कहा भी गया है ना कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। ये हमारी पृथ्वी हमसे कुछ नहीं चाहती, बस थोड़ी सी देखभाल चाहती है।
1: बिल्कुल,
0: और प्यार चाहती है, क्योंकि हमें देती बहुत कुछ है लेकिन मांगती क्या है, सिर्फ प्यार और सम्मान और थोड़ी सी देखभाल। हम जब घर खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे घर के आसपास सारी सिक्योरिटी है कि नहीं, कैमरे वैमरे हैं कि नहीं, सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम क्या ये देखते हैं कि हमारे आसपास का पर्यावरण कैसा है, वहाँ आसपास पेड़ पौधे हैं या नहीं। तो ये जो पर्यावरण है हम सबका है, हवा पानी पेड़ मिट्टी ऊर्जा, इसकी सभी को हमें ज़रूरत होती है, और हमें अपने पर्यावरण की परवाह खुद को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसको पर्यावरण की परवाह नहीं करेंगे तो ये हमारी परेशानी आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल, और जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर पर्यावरण के अनुकूल जीवन होगा, यानी कि इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल, तो इसका अर्थ है कि ऐसी जीवन शैली अपनाना जो प्रकृति को नुकसान कम पहुंचाए और संसाधनों की रक्षा करे। इसमें मुख्यतः अफरोज होता है 3R, यानी कि रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल। मतलब कि आप जितना हो सके सीमित प्रयोग करें, उसको दोबारा यूज मतलब आप प्रयोग करें, और अगर रिसाइकिल होता हो तो उसको रिसाइकिल करें। तो अगर इन चीज़ का हम पालन करेंगे तो ये हमारे लिए भी फायदेमंद होगा। और इसके जो मुख्य तरीके हैं पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीने के, तो उसमें सबसे पहला है कि ऊर्जा बचाएं, बिजली के उपकरण का उपयोग कम करें, सौर ऊर्जा अपनाएं। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत जगह सोलर पैनल लग रहे हैं,
0: सही,
1: तो सौर ऊर्जा अपनाएं और LED लाइटों का उपयोग करें। मतलब कहते हैं ना, अगर छोटी छोटी शुरुआत हम घर से भी करेंगे तो मतलब काफ़ी फायदेमंद चीज़ है। आप ये मत सोचें कि ये मतलब सरकार का काम है, किसी संगठन का काम है, बिल्कुल नहीं, ये आपका ही काम है।
0: सड़कों की नालियों की मोहल्ले की सफाई खुद भी रखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं और अपने घर को भी साफ रखें, और ये नहीं कि ये समझें कि ये पृथ्वी भी हमारा घर ही है। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही इस पृथ्वी का भी ध्यान रखें कि बेवजह की चीज़ें इकट्ठी नहीं करें। जब बाज़ार जाएँ तो ये देखें कि क्या ये ज़रूरी है कि मैं ये ख़रीद रही हूँ, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे कपड़े रखे हैं, हम और भी ज़्यादा कपड़े उठा लाते हैं, या ऐसे ही बर्तनों का या बहुत सारी चीज़ों का हम महिलाओं को शौक़ होता है। तो ये इस तरीके का कबाड़ा जो हम अपने घर में भर रहे हैं वो समझो कि हमारी पृथ्वी में ही इकट्ठा हो रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखें, और उसके साथ साथ जो महिलाएं हैं अपने घरों में जब खाना हम बनाते हैं तो उसका भी ध्यान रखें कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में बनाएं, बेवजह बहुत ज़्यादा खाना बना लेंगे तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा भी वेस्ट होगी और उसके अलावा जो सामान है वो भी वेस्ट होगा।
1: बिल्कुल, और तो जैसे जहाँ रसोई की बात करी है तो इसमें अभी आजकल आप देख रहे हैं ना, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करने का वो प्रावधान है, और जो कचरे की गाड़ी आती है तो उसमें भी ये होता है कि आप गीला कचरा अलग डालें और सूखा अलग डालें।
0: बिल्कुल,
1: इससे ये भी क्या पर्यावरण के लिए सही होता है। और फिर वो कचरे का जो ये वापस मतलब वो करते हैं ना, जो भी रिसाइकल करें या कुछ भी करें, तो उसके लिए इनके लिए भी बेनिफिट है।
0: बिल्कुल,
1: और प्लास्टिक से आप दूरी बनाएं, एकल उपयोग प्लास्टिक यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें, खरीदारी के लिए आप कपड़े के थैले का उपयोग करें, यातायात के साधन जहां तक हो सके सार्वजनिक यातायात के साधन का उपयोग करें, उससे भी मतलब बचत होगी, और कचरा कम करें, कंपोस्टिंग खाद अपनाएं, और प्लास्टिक की बोतल के बजाय स्टील या कांच की बोतल का उपयोग करें, पौधे लगाएं जितना हो सकते हैं, पौधे लगाएं, जैसे कि अभी बारिश आने वाली है तो उसके पहले जितना हो सकता है वृक्षारोपण करें, पौधे लगाएं,

0: इससे आसपास हरियाली बढ़ेगी और प्रकृति की देखभाल भी होगी।
1: और इसी के साथ जैसे हम सार्वजनिक कोई भी प्रोग्राम करते हैं, शादी वगैरह करते हैं, तो इसमें भी इको फ्रेंडली बने और ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जो कि वेस्ट नहीं जाए। जैसे प्लास्टिक के जो हम यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, चम्मच हैं या ग्लास हैं, उनकी जगह हम धोने पत्तल यूज़ करें। जो पुराने ज़माने में हमारे जो चलते चले आ रहे थे, पत्तों से जो धोने और पत्तल होते थे, उनसे होता क्या था कि खाना तो हम खा लेते थे लेकिन उसके बाद जो वेस्ट होता था वो जानवर खा लेते थे। इस तरह हमारा जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा होती थी। उसी तरह से दूसरी चीज़ यह है कि हम जैसे बस, ट्रेन और इनका यूज़ ज़्यादा करें। सिंगल अपने अलग जाएँ तो उसकी जगह एक साथ कम उसमें ऊर्जा की खपत होगी। साइकिलिंग करें, है ना, तो जहाँ तक हो सके ऊर्जा की बचत करें। ऊर्जा का भी जो हम सामान यूज़ कर रहे हैं उनको भी ध्यान से चलाएं, बिजली की, पानी की, सबकी बचत करें। और उसके साथ साथ ये भी है कि वन्य जीव और वनस्पति की भी सुरक्षा करने, बायोडायवर्सिटी को अपनाएं, है ना।
0: बिल्कुल, जैसे हम देख रहे हैं ना कि आजकल ना शहर की तरफ भी वन्य जीवों का रुख हो रहा है, तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि हम वनों की कटाई कर रहे हैं। तो अगर हम उनके घर खत्म करेंगे तो हमारे घर की तरफ रुख करेंगे ही।
1: बिल्कुल
0: तो जितना हो सके जंगल को कम का मतलब जहाँ जरूरत हो वहीं लें, बाकी जंगलों को नहीं काटें, वृक्षारोपण करें। तो अगर ये सब अगर इन बातों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो प्राकृतिक आपदाएं अपने विकराल रूप में हमारे सामने आएगी।
1: बिल्कुल सही है। और हम खुद भी करें और अपने बच्चों को भी प्रकृति का सम्मान करना सिखाएं, क्योंकि ये पृथ्वी हमारी माँ है और अगर ये सही रहेगी तो ही हम सही रहेंगे और हमारा परिवार खुशहाल रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ स्वच्छता है वहाँ खुशहाली है, और जहाँ पे पर्यावरण स्वच्छ है तो हम खुद भी खुश रहेंगे।
0: और जहाँ तक जैसे मकान का हम बात कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं तो उसको भी आप इको फ्रेंडली बना सकते हैं। तो पर्यावरण के अनुकूल आप अपना निर्माण करें मकान का।
1: पेड़ पौधे लगाएं, आसपास हरियाली रखें और वन्य जीवों से भी उनसे भी उनका भी सम्मान करें, क्योंकि वन के अंदर बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। अगर हम पेड़ों की, वृक्षों की रक्षा करेंगे तो उसमें जो रह रहे हैं जीव जंतु वो भी स्वच्छ और सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि जंगलों में बहुत आग भी लग रही है
0: अभी
1: ना,
0: इस मौसम में तो ज़्यादा ही होता है।
1: बहुत ज़्यादा आग हो रही है। और ये भी इसकी वजह से पर्यावरण में असंतुलन की वजह से ही हो रहा है। हरियाली कम हो गई है और गर्मी इस कदर हो गई है कि वन के वन, जंगल के जंगल कट रहे हैं और जल रहे हैं, और उसके साथ साथ उसमें जो जीव जंतु हैं उनके भी घोंसले हैं, घरौंदे हैं, सब खराब हो जाते
0: तो
1: हैं।
0: बस यही है कि छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे और उसकी शुरुआत घर से ही करें कि इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग जितना हो सके सीमित करें, पानी का उपयोग अपने हिसाब से करें, अननेसेसरी पानी को वेस्ट नहीं करें। इसमें तो बहुत छोटी छोटी बातें, और यही चीज़ आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है वो हम हमारे बच्चों को हम क्या देंगे। तो जितना हो सके ये सारी चीज़ आप बच्चों को बचपन से ही सिखाएं कि प्राकृतिक संसाधन हमारे पास सीमित होते हैं।
1: बिल्कुल, और इसका उपयोग सही तरीके से करें। और इसके साथ ही सुनते हैं एक
0: गीत
1: संगीत की दुनिया में चलें और प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: तो शेर मुझे याद आ रहा है, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको ला दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी।
1: सच में मतलब बचपन इतना सुहाना होता है कि
0: बिल्कुल
1: आज हम इतने बड़े होने के बाद भी बचपन की यादें हमारे दिमाग में मतलब बहुत अंतर तक बैठी हुई है।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: और
1: कभी
0: जब
1: कभी
0: गर्मियों
1: लगता
0: की
1: है,
0: छुट्टियां में
1: हाँ कभी कभी
0: हमें
1: हमें लगता है कि हम भी वापस बच्चे बन जाएं।
0: बच्चे बन जाएं। और जब उन दिनों होता क्या था कि मई जून 2 महीने की छुट्टी लगती थी, तो छुट्टी वाले दिन से जब जैसे ही पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक हम नाना नानी के रहते थे, तुम भी रहते होंगे जरूर,
1: बिल्कुल।
0: सभी लोग
1: अरे
0: जाते हैं
1: तो
0: अपने
1: ये तो
0: नानी के।
1: हाँ यही तो समय होता है जब बच्चे अपने नाना नानी के जाते हैं। और एक बात बताऊँ, नानी के यहाँ जब रहने जाते हैं ना तो उस समय हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है,
0: बिल्कुल मस्त मौज मस्ती के
1: बिल्कुल
0: मूड में
1: फ्री
0: रहते
1: लाइफ और मौज
0: हैं।
1: मस्ती के मूड में,
0: बिल्कुल
1: तो मतलब एक चेंज हो जाता है। और बच्चों को भी एक मतलब कहते हैं ना उस समय एनर्जी मतलब एनर्जेटिक बच्चे फील करते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और उस टाइम के जो खेल क्या थे, चंगा पो खेलते, गिल्ली डंडा, लूडो, रस्सी कूद, पकड़म पकड़ाई, संतोलिया, ये सब चीज़ें आज के बच्चे तो बिल्कुल भूल ही गए हैं, क्योंकि आज माहौल बिल्कुल चेंज हो गया है ना। पहले मोबाइल नहीं होते थे तो हम किसी के भी घर में कैसे भी घुस जाते थे, और हर घर ऐसा लगता था कि अपना ही घर है ना। तो वो बात आज रही नहीं है, बच्चों के बचपन थोड़ा सा खोता चला गया, लेकिन फिर भी छुट्टियां तो छुट्टियां ही होती हैं, बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो बच्चों के साथ साथ हम महिलाओं का भी तो हो जाता है छुट्टियों का माहौल थोड़ा सा, कि हम
1: हाँ
0: भी
1: तो
0: बहुत सारी जिम्मेदारियां
1: मैं
0: जो
1: वही
0: हमारी
1: कह रही
0: होती
1: हूँ कि जैसे
0: हैं।
1: छुट्टियाँ शुरू हो चुकी है तो इसके साथ साथ ही बच्चों के चेहरे पे तो मुस्कुराहट आती है, लेकिन माता पिता के लिए बहुत बड़ी उलझन हो जाती है। तो स्कूल बंद होने का मतलब है कि बच्चों का सेट रूटीन बिगड़ जाता है, ऐसे में उनका ज़्यादातर समय टीवी मोबाइल या वीडियो गेम्स में बीतने लगता है। तो एक माता पिता के रूप में सबसे मतलब बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर बच्चों को व्यस्त कैसे रखा जाए। लेकिन अफकोर्स आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शन हैं, समर कैंप्स लगते हैं, कहीं हॉबी क्लासेस चलती है, तो ये ज़रूरी है कि छुट्टियों में भी आप बच्चों का जो समय है वो सेट करके चलें। एक उनको अनुशासन उस समय भी उनको कहें मेंटेन करके चलें, ऐसा नहीं कि छुट्टियां हो गई है तो आप लेट तक उठ रहे हैं, आपका कोई रूटीन नहीं है। तो बच्चों को क्या समय की कीमत समझाएं कि अभी जो तुम्हें समय मिला है छुट्टियों का उसको अच्छे से उपयोग करें।
0: बिल्कुल। और बच्चों की शुरुआत यही हो कि वो सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक जाएं, और बच्चे क्या आप खुद भी जाएं ना साथ में, क्योंकि उन दिनों आप बच्चों की लंच बॉक्स की तैयारी में बिजी रहती थी, नहीं जा पाती। तो हम महिलाओं को भी तो छुट्टियां मिलती हैं बच्चों के साथ, तो हमें भी चाहिए कि हम भी बच्चों के साथ सुबह सुबह जाएं, मॉर्निंग वॉक जाएं, और उसके साथ कोई साइकिलिंग वगैरह भी करें, और उसके अलावा हम अपनी प्रतिभा को भी निखारें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम माँ की गोद से लेके कब्र की आगोश तक कुछ ना कुछ सीखते हैं,
1: हाँ तो
0: किसी
1: वही
0: न किसी हॉबी क्लास को ज्वाइन कर सकते
1: बिल्कुल, क्योंकि
0: हैं।
1: ये जो समय होता है ना उसमें महिलाएं वैसे देखा जाए एक चिंता का विषय भी होता है कि बच्चों को कैसे आप व्यस्त रखें, लेकिन आप बच्चों का भी शेड्यूल सेट करें और आप खुद भी कुछ नया सीखें। ऐसे में आप स्विमिंग क्लास ज्वाइन कर सकती हैं, इसके साथ ही आप कुकिंग क्लास ज्वाइन कर सकती हैं, अगर गार्डनिंग
0: बिल्कुल।
1: का शौक है तो आप अपने घर के गार्डन को मेंटेन कर सकती हैं।
0: और बाजार भी जाएं, बच्चों को शॉपिंग के गुर भी सिखाएं, क्योंकि ये बच्चों के लिए सीखने की भी के लिए समय होता है, कि हम बच्चों को इस टाइम बहुत कुछ सिखा सकते हैं घर में रह के, नए नए डिशेस बनाना, अगर लड़कियां हैं, लड़कियां हैं लड़के हों,
1: आज
0: दोनों
1: के
0: को ही
1: टाइम पे
0: आज
1: तो
0: के
1: ये चीज़ें
0: सिखाएं,
1: कुकिंग तो दोनों को आनी चाहिए,
0: कुकिंग
1: बहुत
0: सिखाएं,
1: ज़रूरी है।
0: उसके अलावा फिर उनको दूसरी चीज़ें भी सिखाएं, जैसे कि अगर आपको रिश्तेदारों से मेलजोल का जो तरीका है, मेहमान नवाजी के गुर, ये इन दिनों बहुत सही समय है सिखाने का, क्योंकि छुट्टियों में हमारे घर में भी मेहमान आते हैं, कोई बुआ फूफी वगैरह मौसी, हम जाते भी हैं और हमारे यहाँ आते भी हैं, तो मेहमान नवाजी कैसे रखें और कैसे मेलजोल रखें, बातचीत कैसे करें, और बुज़ुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करें, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें आपस में, तो ये गुर सिखाने का बहुत ही अच्छा मौका होता है।
1: और बच्चों को आप डांस क्लास भी ज्वाइन करा सकती है, इसके साथ साथ आप खुद भी कर सकती है। कितनी बार क्या होता है कोई फैमिली फंक्शन होता है, सब जने डांस कर रहे हैं और उस समय हम नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं अंदर ये चीज़ हम मतलब हमको कमी लगती है, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ऐसे में आप भी डांस क्लास ज्वाइन कर सकती हैं और किसी भी कार्यक्रम का आनंद ले सकती है। तो बच्चों को भी भेजें और खुद भी ज्वाइन करें। इसके साथ ही शाम के समय में जैसे आप देखते हैं ना कॉलोनीज में और का पार्क बने होते हैं, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए आप बच्चों को ले जाएं, आपकी भी इवनिंग वॉक हो जाएगी, बच्चे भी सबसे मतलब जुड़ेंगे, दूसरे बच्चे भी आते हैं उनसे भी बच्चे जुड़ेंगे, तो
0: सही।
1: एक मतलब उनमें बच्चों को भी अच्छा लगेगा। मतलब घर के घर में पैक नहीं रखना है उनको, नहीं तो जितना अगर आप घर में रखेंगे तो उतना वो स्क्रीन टाइम देगा।
0: हाँ, तो ये तो रही ग्रीष्मकालीन अवकाश के दिनों में हम महिलाओं की और बच्चों की, सभी की भूमिका जो होती है वो अलग स्पेशल हो जाती है। अब सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: तो नीलम, आज जो हमारे फखरुद्दीन अली अहमद जो भारत के पांचवें राष्ट्रपति थे उनकी जयंती है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 में 11 फरवरी 1977 तक अपनी पूरी जिंदगी उनकी पूरी पदभार संभाला।
1: मतलब ये कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और हृदयघात के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
0: जी,
1: तो
0: 13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली के होस काजी इलाके में अहमद ने राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और प्रतिबद्धता से भारतीय राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सरकारी हाई स्कूल से पूरी की और बाद में दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद लंदन में वकालत की उन्होंने।
1: 1925 में नेहरू से मिलने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उन्हें 3.5 साल की जेल भी हुई।
0: जी, और राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रिय भागीदारी से हुई। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर महात्मा गांधी जी के निष्ठावान अनुयायी के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें 1942 में गिरफ्तार भी किया गया। और आज़ादी के बाद अहमद साहब ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर आसीन रहे। वे 1952 में राज्यसभा और बाद में 1967 में लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने खाद्य और कृषि, सहकारिता, शिक्षा, औद्योगिक विकास और कंपनी कानून जैसे विभागों का भी कार्यभार संभाला। 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद साहब भारत के पांचवें राष्ट्रपति चुने गए। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में गहरी रुचि थी। उन्हें खेलों का भी बहुत शौक था। वे भारतीय ओलंपिक संघ से भी जुड़े हुए थे और उनका 11 फरवरी 1977 को पद पर रहते हुए निधन हो गया। राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और भारतीय राजनीति में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। और साथ ही आज आर के नारायण जी साहब जो हैं उनकी पुण्यतिथि भी है, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 200 से ज़्यादा उपन्यासों, लघु कथाओं और नाटकों के लेखक हैं। इनकी रचनाएं रोज़मर्रा के जीवन को उजागर करती हैं, जो अक्सर पारंपरिक जीवन और आधुनिकता के बीच संतुलन को उजागर करती हैं।
1: बिल्कुल, और जो ये आर के नारायण थे, ये प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकार और मालगुडी डेज के रचयिता थे। आपने बच मतलब हम जब छोटे थे हमने मालगुडी डेज एक सीरियल देखा था
0: जी।
1: तो उसके रचनाकार यही थे और इनका जन्म 13 मई 2001 को चेन्नई में हुआ था।
0: 60 वर्षों से अधिक अपने करियर में उन्होंने
1: जन्म नहीं सॉरी इनकी मृत्यु 13 मई 2001 को तो हुई थी चेन्नई में।
0: और इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को
1: चेन्नई में हुआ
0: था। और बच्चों को इनकी कहानियाँ बहुत पसंद है, क्योंकि इनकी जो कहानियाँ होती थी वो ऐसी होती थी बिल्कुल सिंपल सादगी वाली। और इन्होंने एक काल्पनिक गांव बनाया था मालगुडी डेज, उसी पर सीरियल उसी पर आधारित थे जिसको कि हम टीवी पर देखते थे। और इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार भी मिला और संसद में अपनी सदन संसद के जो ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए भी इन्होंने इनको मनोनीत किया गया था।
1: बिल्कुल, और 1964 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और आर के नारायण अपने सरल, हास्यपूर्ण और सूक्ष्म लेखन शैली के लिए जाने जाते थे, जो भारतीय जीवन की रोज़मर्रा की कहानियों को जीवंत करती है।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे इन्होंने नाटक और जैसे बताया कि उपन्यास और लघु कथाएँ बहुत सारी लिखी हैं, तो आज हम उनको याद कर रहे हैं। और इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: सच में अफरोज
1: हाँ
0: सबको एक दिन मिट्टी में ही मिलना है, लेकिन इतने मतलब बोल इतने अच्छे बोल बोल के जाए कि आने वाली पीढ़ी भी याद रखे, और इसी प्रकार कार्य भी ऐसे करें कि आने वाली पीढ़ी हमको याद रखे। जैसे
1: बिल्कुल
0: हमने शुरू में पर्यावरण की बात की थी, तो आप ऐसे कार्य करें कि आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिले। मतलब अगर हम अच्छे कार्य करेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, तो यही सारी चीज़ें हम आने वाले बच्चों को भी सिखा सकेंगे। तो
1: बिल्कुल
0: इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि प्लास्टिक मुक्त जीवन। हम जैसे देखते हैं आजकल ना प्लास्टिक का कचरा बहुत सब तरफ फैला होता है, तो इसके लिए कि हम छोटे छोटे अगर प्रयास करेंगे तो कुछ
1: बिल्कुल
0: हद तक हम प्लास्टिक मुक्त जीवन जी सकते हैं।
1: बिल्कुल। और उसके लिए उपाय सबसे पहला तो यह है कि जब हम खरीदारी करने के लिए जाएं तो कपड़े के थैले लेकर जाएं, क्योंकि वो तो थैलियाँ प्लास्टिक की देंगे, तो हम उनको बिल्कुल ना कह दें कि नहीं, हमें प्लास्टिक में नहीं लेना है और कपड़े के थैले में ही लेना है। स्टेनलेस स्टील और कांच का उपयोग पानी की बोतलों के लिए करें, है ना।
0: बिल्कुल, और पैकेजिंग से बचें, थोक में सामान खरीदें और फल सब्जियों के प्लास्टिक बैग के बजाय कागज के बैग में लें। और रसोई में भी आप प्लास्टिक के कंटेनरों को कांच या स्टेनलेस स्टील या सिरेमिक के डब्बों से बदल सकती हैं। प्लास्टिक के तिनके जैसे कि स्ट्रॉज होती हैं, डिस्पोजेबल कप होते हैं, तो इनका उपयोग नहीं करें। बोतल बंद पानी का उपयोग भी नहीं करें, क्योंकि ये जो बॉटल्स हैं ना, ये वापस रीयूज भी नहीं होती है, ना कंपोज होती है, तो ये
1: बिल्कुल।
0: बहुत प्रकृति के लिए
1: और
0: नुकसानदायक
1: जब
0: है।
1: हम महिलाएं कहीं खाना बाहर डालती भी है ना, बचा हुआ खाना, तो थैलियों में डाल के नहीं डालें, बल्कि वैसे ही डाल दें, कागज़ में डाल दें या वैसे ही साफ ज़मीन में डालें, क्योंकि अगर वो खाना जो थैली है वो खाने के साथ जानवरों के पेट में चली जाएंगी तो वो उनके भी जीवन का खतरा होता है। उसी तरह से जो समुद्री जीव है उनमें भी मछलियाँ वगैरह, इनको अगर पर्यावरण में और हम समुद्रों में नदियों में गंदगी का डालेंगे, कचरा डालेंगे प्लास्टिक का, तो वो उनको खा जाएंगे, क्योंकि उनको तो पता तो होगा नहीं, जब वो भूखी होती हैं तो जो होता है वो खा लेती हैं, तो उससे उनकी जान का भी खतरा है।
0: बिल्कुल,
1: और
0: और हम
1: इधर
0: कितनी बार ये न्यूज़ पढ़ते भी हैं कि जैसे किसी गाय की मृत्यु हो गई,
1: बिल्कुल
0: अब उसको बाद में उसके अंदर से इतनी सारी प्लास्टिक निकलती है। तो ये मतलब छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखें, अगर आप मान लो जानवर को खाना भी डाल रहे हैं तो बिल्कुल खुला खाना डालें ताकि वो ढंग से खा सके।
1: बिल्कुल। और उसी तरह हम अगर जब गाड़ी में कोई जा रहे हैं तो प्लास्टिक की चीज़ों में कुछ भी सामान नहीं रखें, क्योंकि जब वैसे भी प्लास्टिक अगर गर्मी के संपर्क में आके बिल्कुल जहरीला हो जाता है, और अगर वो गाड़ी के अंदर रहेगा है तो कई कई गुना ज़्यादा वो उसमें गर्मी हो जाती है, तो उससे हम अगर वो जाएंगे पियेंगे या खाएंगे जो भी चीज़, तो उससे जो प्लास्टिक के कण हैं वो हमारे पेट में जाएंगे और उससे कैंसर तक की समस्या हो सकती है, और हार्मोनल इनबैलेंस जो होता है, ये सभी चीज़ें इसी वजह से होती हैं कि हम प्लास्टिक का गलत तरीके से प्रयोग
0: और
1: करते
0: नहीं,
1: हैं।
0: हमने कितनी बार देखा होगा कि ये भी कहा जाता है कलरफुल प्लास्टिक का उपयोग भी नहीं करें। अगर उसमें कोई खाद्य पदार्थ रख रहे हैं तो कितनी बार सूरज की किरणों से उसमें वापस चेंजेस होते हैं, और फिर
1: बिल्कुल
0: वो खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाता है, फिर वो हमारे आगे लिए हमारे लिए भी हानिकारक होता है।
1: बिल्कुल, इससे जो पर्यावरण में विषैली गैस होती हैं और पर्यावरण दूषित हो जाता है, और तो इसीलिए हम प्लास्टिक को तो बिल्कुल ना ही कह दें, और इसके लिए हमें जागरूकता फैलानी होगी, है ना। हम तो खुद करें ही सही, बल्कि हम अपने मोहल्लों में, आस पड़ोस में भी ये लोगों को इकट्ठा करें और रैलियाँ निकालें, इस तरीके से सेमिनार करें और कार्यशालाएँ आयोजित करें, प्रतियोगिताएं करें, बच्चों में भी जागरण पैदा करें, स्कूलों में भी जाके इसका अवेयरनेस डालें कि भाई आपको प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो परिवर्तन हो रहे हैं हमारी हेल्थ को लेकर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि पहले कहाँ हम देखते थे कि इतनी, जिसको देखो हर तीसरे चौथे घर में कैंसर की बीमारी जैसे होती, पहले नहीं होती थी, लेकिन आजकल कुछ बीमारियाँ ऐसी हो गई हैं बहुत ज़्यादा जो जान को ख़तरा पैदा कर रही हैं, तो हमें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें जागना होगा और प्लास्टिक को ना कहना ही
0: बिल्कुल,
1: पड़ेगा।
0: और है ना, बच्चों को अगर आप खाना दे रहे हैं तो प्लास्टिक के टिफिन में बिल्कुल नहीं दें।

0: गरम खाना बिल्कुल उसमें भरे ही ना, वो
1: बिल्कुल
0: खाना और हानिकारक हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक के केमिकल से मिलके उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो ये मतलब बहुत छोटी छोटी बातें, जहाँ अगर हम विवेक रखेंगे तो ये
1: बिल्कुल।
0: हमारे लिए भी अच्छा रहेगा।
1: और अब यही समय है कि हम पूरा ध्यान इस चीज़ के ऊपर दें, क्योंकि अभी इस टाइम गर्मी भी तेज़ पड़ रही है, तो इसके संपर्क में जब हम प्लास्टिक की चीज़ों को लाते हैं तो वो और भी ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इसी के साथ चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: अफरोज, सच में दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, और गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी है तो हम तो यही चाहेंगे कि बच्चों के साथ साथ आप भी इन छुट्टियों का आनंद लें, कुछ अच्छा
1: बिल्कुल
0: नया करें। और इसी आशा के साथ हम हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज्ञा दीजिए,
1: अफरोज फारूकी को और
0: नीलम को नमस्कार।
1: नमस्कार।

श्रोताओं, महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:46 हुए हैं। लीजिए एक बार

फिर से आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और आपके रेडियो सेट तक पहुंचाते हैं आपके पसंदीदा फिल्मी नगमे फिल्म संगीत के माध्यम से। पहला गीत उदित नारायण और अनुराधा पोड़वाल की आवाज में फिल्म दिल से हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं।

0: story, but everybody will sing with me.
1: Okay.
0: Ready?

0: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। एस जानकी और मोहम्मद अजीज के युगल स्वर में आखिरी रास्ता फिल्म का ये गीत हमने आपके रेडियो सेट पर पहुंचाया। और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आई मिलन की वेला से हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं। एंजॉय कीजिए फिल्म संगीत के इस सेगमेंट के इस खूबसूरत नगमे को।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: 10 लाख की लॉटरी, मुझे
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की ही आवाज़ थी और फिल्म थी आई मिलन की वेला से ये गीत हमने आपके रेडियो सेट पर पहुंचाया। श्रोताओं, आप कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं फिल्म पत्थर के फूल से दिलकश आवाज़ एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की। और ये कार्यक्रम का आखिरी गीत इसी के साथ आपके रेडियो दोस्त स्वाति को दीजिए इजाज़त इस कार्यक्रम से और एन्जॉय कीजिए इस सेगमेंट के इस आखिरी नगमे को।

और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये सफर बस यहीं तक। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 2:10 हो चुके हैं और ये समय है विकास चर्चा का। विकास चर्चा के अंतर्गत हमारा आज का विषय है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो लीजिए सुनते हैं विकास चर्चा।

0: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो 8 अप्रैल 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ये योजना विनिर्माण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में और गैर कृषि क्षेत्र में लगे आय सृजित करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान करती है। इन सूक्ष्म और लघु इकाइयों में ग्रामीण और शहरों में छोटी विनिर्माण इकाइयों, सेवा क्षेत्र की इकाइयों, दुकानदारों, फलों, सब्जी विक्रेताओं, एक ट्रक ऑपरेटरों, खाद्य सेवा इकाइयों, मरम्मत की दुकानों, मशीन ऑपरेटरों, छोटे उद्योगों को कारीगरी, खाद्य प्रोसेसर और अन्य के रूप में चलने वाली लाखों स्वामित्व साझेदारी फर्म शामिल है। गौरतलब है, मुद्रा योजना के तहत ऋण केवल बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें शामिल है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, राज्य संचालित सहकारी बैंक, क्षेत्रीय क्षेत्र के ग्रामीण बैंक, सूक्ष्म वित्त की पेशकश करने वाली संस्थान, बैंकों के अलावा अन्य वित्तीय कंपनियां। इस योजना के लाभों को की तरफ अगर नज़र डाली जाए तो योजना के तहत लाभ को 3 श्रेणियों के तहत विभाजित किया गया है, शिशु, किशोर और तरुण के रूप में। जो लाभार्थी सूक्ष्म इकाई उद्यमी की वृद्धि, विकास और वित्त पोषण की जरूरतों के चरण को दर्शाता है। शिशु जो कि 50,000 रुपए तक के ऋण को कवर करता है, किशोर जो कि 50,000 एक से 5 लाख रुपए तक के ऋण को कवर करता है और तरुण जो कि 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के ऋण को कवर करता है। इस योजना का हिस्सा बनने के लिए लोन देने के लिए बैंक इस बात को सुनिश्चित करता है कि लोन डिफॉल्टर ना हो, इसलिए यह देखा जाता है कि आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। उद्योगकर्ताओं को प्रस्तावित गतिविधि को करने के लिए आवश्यक कौशल, अनुभव, ज्ञान रखने की आवश्यकता हो सकती है, शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता यदि कोई हो का मूल्यांकन प्रस्तावित गतिविधि की प्रकृति और इसकी आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इस योजना में आवेदन ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक शर्तें आईडी प्रूफ, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट के आकार की तस्वीर, आवेदन के हस्ताक्षर और पते का प्रमाण। मुद्रा योजना पर किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप सीधे पोर्टल पर जाकर इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विकास चर्चा और आज का विषय था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। और अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार।

0: से तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई

0: की कक्षा 12वीं की विज्ञान वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 162,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 296,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क

0: प्रतिशत बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में आधा प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल पहली जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराओका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम गायत्री भाई सा राम राम
1: राम राम पेमा भाई राम राम
0: कृषि जगत सुनो वाला सगला किसान भाई ने अपनो
1: राम राम सा।
0: देखो सा किसान भाई अपना कार्यक्रम भी टेम भी और मैं आया अपने घनी सारी जानकारी देवार वास्ते तो खेती बाड़ी संबंधी जानकारी देवा और लारे लारे अपने काम काज री बात कही वैसे कही सब जानकारी आपने देवा सा। तो गायत्री भाई साहब किसान भाई री जो बात है आज की बात यह है कि सब्जी की उन्नत नर्सरी आपकी कणी तरह तैयार कर सका और अणमें अपना कई कई काम करना चाहे तो अणमें आगे की जानकारी कही देवा सा।
1: बिल्कुल सा, सब्जी उत्पादन में ने सफलता री जो पहली सीढ़ी है वह एक स्वस्थ और

0: जसवी नर्सरी यानी पौधशाला तैयार करनो है। अगर नर्सरी मजबूत वेगा तो फसल री पैदावार और गुणवत्ता दो ही उत्कृष्ट वेगा सा।
1: सही कह रहे हो सर, नर्सरी यदि आप तैयार करें तो नर्सरी रा वास्ते स्थान को चयन है सबो मोटी बात है। और आप आदर्श नर्सरी रा वास्ते एक स्थान को चुनाव जो करा आप ही वो सही तरीका में अपन ने करना चाहे। और कुछ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि जो स्थान को चयन कर रहे हैं तो उनमें देखो धूप की उपलब्धता मतलब तावड़ो कहीं तरह वो हीरो है, यह अपन ने ध्यान रखना पड़ेगा। नर्सरी वाली जो जगह है वटे खुली जगह और तावड़ो आओ वाली जगह में नहीं चाहे, और छायादार स्थान पर जो अपन ने पौधा कमज़ोर लागे और लंबा भी नहीं चल पाए ऐसा।
0: नर्सरी वाली जो भूमि है वह थोड़ी ऊंची भी वेणी छावे ताकि वर्कारो जो पानी है वो जमा नहीं वे सके और जल भराव आर्द्र पतन रोग रो खतरो भी वणियो लोग रेवे। लारे लारे पानी री जो सुविधा है वह वणी नर्सरी में हव वेणी छावे क्योंकि स्वच्छ जो सिंचाई है वह जल स्रोत अंडे पास में ने वेणो भी छावे सा।
1: और देखो सा आवारा मवेशी जो व्या करे और तेज हवा चालवा की जो स्थिति है ये सब चीज़ें पे अपना ध्यान रखने पड़ेगा जी नर्सरी की सुरक्षा वणिदी की रहेगा। और जो बाढ़ है या फिर नेट लगाई जो आप इनकी व्यवस्था कर सका और मिट्टी को उपचार जो है वन की तैयारी भी अपन ने करनी चाहे, मिट्टी ने उपजाऊ और रोग मुक्त बनावा वास्ते अपन ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहे सा।
0: मिट्टी रा अलग अलग प्रकार है सा, जिस तरह की नर्सरी रे वास्ते दोमट या बलुई दोमट मिट्टी बहुत ही सर्वोत्तम रहे है। लारे लारे जमीन में ने दो तीन बार हाउ तरीकों जोत न वंडे जुताई करनी है, मिट्टी ने भुरभुरो मणाई लेनो है। मिट्टी में ने अगर घास फूस है कंकड़ पत्थर है तो वणा ने हाउ तरीकों हटाई देना है निकाल देना है। और लारे लारे मिट्टी में ने मौजूद जो भी हानिकारक कीट है फफूंद है वणा ने नष्ट करवाने वास्ते फार्मेल्डिहाइड या पचे बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में गोल बनाई छिड़काव करनो है। लारे लारे सौर ऊर्जा द्वारा भी या पचे कही सका कि जो दंडरो जो हव तावड़ो जो पड़े है वंडे वो भी मिट्टी ने उपचारित कर सका सा।
1: सही कह रहे हो सर, और खाद और उर्वरक प्रबंधन भी आपने देखना पड़ेगा। नर्सरी की जो क्यारियां है वणा ने पर्याप्त पोषण तत्व मिलनो चाहे, वंडे वास्ते कई करनो है कि प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र रा महीने लगभग 4-5 किलोग्राम जो है अच्छी सड़ी तक की गोबर की खाद या पचे अपने केंचो वाली खाद है वो अपने काम में लेनी पड़ेगा। और मिट्टी रे महीने नीम की खड़ी मिलावा तो देखो कि जो उदय लागे वणियों भी बच सके और अन्य तरह का जो कीट है वण का प्रकोप पे भी वंचाए देकर राख सका। और पौधा की जो अपने प्रारंभिक वृद्धि है वण में थोड़ी मात्रा रे महीने फास्फोरस को प्रयोग करा तो भी लाभकारी रहे सा।
0: और किसान भाइया ने नर्सरी बनावारे वास्ते हव उन्नत क्यारिया बनावनी है। साग सब्जियां री जो नर्सरी है वनारे वास्ते उठी लगी क्यारिया जो वेवे वे सब उपयुक्त वेवे है। क्यारी री जो चौड़ाई है वह 1 मीटर, लंबाई 3-5 मीटर और ऊंचाई जो है वह जमीन 15-20 सेंटीमीटर वेणी छवे। लारे लारे दो ही क्यारिया रे वच में ने 40-50 सेंटीमीटर रो रास्तो भी छोड़नो है ताकि निराई गुड़ाई और सिंचाई में ने आसानी वेवे सा।
1: देखो साहब आप ही अगर नर्सरी रो काम कर रहे हैं तो बीज को चुनाव करवो भी बहुत ही जरूरी है। बीज को चयन आप ही करा तो हमेशा अपन प्रमाणित जो संस्थान है और वणियों उन्नत और हाइब्रिड किस्म का बीज ही खरीदना चाहे, और बीज जो है वो साफ और सुडोल और रोग मुक्त बना चाहे सा। तो देखो सा यह जानकारी ना और आगे जारी रखा लेकिन कार्यक्रम में आया हाँ मनोरंजन भी बनो चाहे तो आपके हो तो सुनावा एक राजस्थानी गीत।
0: हाँ सर।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
4: ब्रो ये फटा है,
5: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
6: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
4: वाओ, नया नोट मिलेगा?
5: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
7: तो पेमा भाई किसान भाइया ने मनभावन राजस्थानी गीत सुनायो सा। किसान भाइया ने जटे किसान की बात में बता रहा कि साग सब्जियारी उन्नत नर्सरी जो है किसान भाई किस तरह तैयार कर सके सा।
8: सही कह रहे हो सर, अब आप ही जो बात कर रहे हैं, हाँ बीज ने को चयन करना, और बीज चयन का बाद में देखो बीज ने उपचारित करवारी बात कर रखी है। देखो साहब, वही पहले अपने बीज को जो है फफूंद नाशक जो वह कार्बेंडाजिम या पचे थायरमो जो अपन उपचारित करना चाहे, 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के दरों अपन उपचारित करना चाहे, और जैविक खेती रे वास्ते अपन ट्राइकोडर्मा वीरिड जो है वण को उपयोग करना चाहे, और बुवाई की विधि जो है वण में देखो बीज ने छिड़कन अपने जो है बोवा के बजाय लाइन जो है मतलब कतारू कतार मिलाई जो है बुवाई करनी चाहे सा।
7: बिल्कुल सा, बुवाई करता टाइम यो भी ध्यान रखना है कि कतारू कतार जो दूरी है वह 5-7 सेंटीमीटर रखनी है। बीज ने वंडी मोटाई 2-3 गुणों गहराई पर बोनो है, ज़्यादा गहरो वेवो अंकुरण में ने समस्या आई सके है, और बुवाई के बाद में ने बीजा पे छनी लकी खाद और मिट्टी रे मिश्रण ढाक देनो है, और सिंचाई और जल प्रबंधन की जटे बात करा तो बुवाई रे तुरंत बाद में ने अपने हजारों हल्की सिंचाई करनी

0: है सीधा पाइप आपने पानी नहीं देनो है वरना बीज जो है वे बाहर निकल सके सा।
1: सही कह रहे हो सर, नर्सरी हमेशा नमी बनी दिखी रखनी चाहिए अपने, और लेकिन कही है कि जो मिट्टी है वह दलदली नहीं बीनी चाहिए। और हाजी टाइम पे देखो वण की तुलना में अपने सुबह की टाइम पे जो पाना तो इनमें करा तो ज़्यादा लाभकारी व्या करे। और नर्सरी की सुरक्षा देखभाल की बात करा तो देखो मल्चिंग को इस्तेमाल अपन करना चाहे। अंकुरण विभाग के तक जो अपन क्यारियाँ हैं वहाँ ने सूखी घास या पुलाव ढाक लेनी चाहे, और अनिवार्य महीने नमी जो बनी रखवारे वास्ते अपन अंकुरण जो है जल्दी वे नमी अगर आप ही रखा तो, और अंकुरण जो है वह निकलवा में आप देखो मल्चिंग ने हटाई देना चाहे।
0: नर्सरी री सुरक्षा रे वास्ते नेट हाउस रो भी किसान भाइयों ने प्रयोग करनो है। पक्षी व्या, कीट व्या या पचे सीधा वायरस जिस तरह की सफ़ेद मक्खी है अणा बचावा रे वास्ते 40-50 मेश री नाइलॉन जो नेट है वनु कवर करनो है। लारे लारे खरपतवार ने भी समय समय पर हाथ निकालता रहनो है ताकि वे दूसरा जो मुख्य रूखड़ा है वनारा पोषण ने नी छीने सा।
1: और कीट और रोग नियंत्रण है वीको भी अपन ध्यान देना पड़ेगा। आर्द्र पतन जो है वीको ध्यान देना पड़ेगा। ये नर्सरी जो है अपन सबों जो है घातक बीमारी वे आर्द्र पतन की अणियों कही है बचवार वास्ते अपन जल निकासी सही रखनी पड़ेगा। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को अपन छिड़काव अपन करना पड़ेगा। रस चूसक कीट है वहाँ का नियंत्रण का वास्ते अपन एफिड्स या पचे थ्रिप्स को नियंत्रण का वास्ते अपन नीम को तेल या पचे हल्का कीटनाशक को प्रयोग करना चाहे सा।
0: खेत में ने रूखड़ा री रोपायू 4-7 दिन पहला रूखड़ा ने बाढ़ ने वातावरण में तैयार कियो जानो है। सिंचाई जो है वह धीरे धीरे कम कर देनी है। अगर नेट हाउस में ने है तो कवर हटाई सीधी धूप लागवा देनी है। अणु जो रूखड़ा है वे मजबूत बने है और खेत में लागवाने बाद में भी मरे नहीं है सा।
1: और रोपाई को सही समय जो है वो अपन ध्यान देना चाहे। यदि पौधा रा महीने आप देखो 4-5 असली पंक्तियाँ जो है वह अगर वही जावे तो अणी ऊंचाई जो 10-15 सेंटीमीटर वही जानी चाहे। यदि कही है कि रोपाई का वास्ते अपन तैयार वही जावे सा, और रोपाई हमेशा हाजरी टाइम पे आप ही करा तो वो ज़्यादा बढ़िया है ताकि कही कि रात की जो ओस है वह पौधा ने जो है बढ़िया बनावे सा।
0: और उन्नत नर्सरी जो है वह प्रबंधन न केवल बीजारी बचत करे बल्कि कम समय में ने स्वस्थ फसल तैयार करवा में ने मदद करे है। आधुनिक तकनीका जिस तरह की प्रो ट्रे और कोकोपीट रो उपयोग कर मिट्टी रहित माध्यम में भी नर्सरी तैयार की जा सके है। जणू बीमारियां नीरे बराबर वेवे है और अगर नर्सरी री उचित देख रेख और तकनीकी जानकारी रे लारे तैयार की दी गई जो नर्सरी है वह सफल सब्जी उत्पादन रो आधार वेवे और किसान भैया ने वास्ते और अतिरिक्त आय रो साधन भी बन सके है। और अगर किसान भैया ने अतिरिक्त आय मिलेगा, अतिरिक्त मुनाफा मिलेगा और हव मेहनत रो फल मिलेगा तो किसान भैया ने चारी मेर खुशिया ही खुशिया वेगा। तो क्यों नहीं किसान भैया री खुशी ने और भी दुगनी करा और हुणावा प्यारो सो राजस्थानी गीत।

0: किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 3 बज चुके हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत हासिल कर विश्वास मत जीत लिया है। एडापड़ी पलानीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और पीएमके समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। डीएमके और अन्य गठबंधन सहयोगी दलों ने प्रस्ताव में भाग नहीं लिया और विधानसभा से वॉकआउट किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके ने सरकार का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने बहुमत साबित करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुदुचेरी के राज्यपाल के कैलाश नाथन ने टी श्रीरंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सीवीएम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री के 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद के उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किए जाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE के अनुसार 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% और छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। नीट UG परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत SOG ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीर को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। सोने या चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। सरकार ने सोने या चांदी का आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ जाएगा। इस बीच विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक विजेता PV सिंधु ने चीनी ताइपे के तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 3:05 हो चुके हैं। हमारी पहली सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। सांध्यकालीन सभा के प्रसारण लेकर शाम 5 बजे हम एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम हमारे एफएम चैनल पर भी एक साथ सुना जा सकेगा।

0: कि रास्ते मुश्किल हो तो हिम्मत और बढ़ जाती है, सपनों की आग दिल में हो तो दुनिया झुक जाती है, जो गिर कर भी उठना जानते हैं हर बार, कि जो गिर कर भी उठना जानते हैं हर बार, वही लोग एक दिन इतिहास बना जाते हैं।
1: तो इसी के साथ स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहल और मेरे साथ है,
0: आर्यन।
1: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों, शाम की ठंडी हवाओं में एक नई बात लाए हैं, सपनों को हकीकत बनाने का जज्बा साथ लाए हैं, मिट्टी की खुशबू से जुड़ा एक नया सफर सुनाएंगे आज रेडियो पर, स्टार्टअप की एक इंस्पायरिंग कहानी लाए हैं।
1: वाह, क्या बात है आर्यन। और इसी खूबसूरत शाम के साथ हम वेलकम करते हैं आप सभी दोस्तों का आपके फेवरेट युववाणी शो में, जहां बातें होती है इंस्पिरेशन की, इनोवेशन की और उन सपनों की जो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं।
0: तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टार्टअप अर्थनवेयर। नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? मिट्टी की खुशबू, कुल्हड़ वाली चाय, मटके का ठंडा पानी और वो देसी टच जो दिल को सुकून दे देता है।
1: बिल्कुल, लेकिन आज का यूथ इस ट्रेडिशनल चीज़ को एक मॉडर्न बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट कर रहा है। आज अर्थनवेयर सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं रहे बल्कि एक सक्सेसफुल इको फ्रेंडली स्टार्टअप मॉडल बन चुके हैं।
0: और ऑनेस्टली नेहल, जब दुनिया प्लास्टिक पॉल्यूशन से परेशान है, तब मिट्टी से बने प्रोडक्ट्स एक सस्टेनेबल फ्यूचर की उम्मीद बनकर सामने आए हैं।
1: एग्जैक्टली, और इसी लिए आज हम बात करेंगे अर्थनवेयर स्टार्टअप्स आइडियाज़ की, जिसमें होगी बात बिजनेस मॉडल्स, यूथ अपॉर्चुनिटीज़, इंडियन कल्चर कनेक्शन और कैसे ये स्टार्टअप एनवायरनमेंट भी सेव कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहा है।
0: तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अर्थनवेयर होता क्या है।
1: अर्थनवेयर मतलब मिट्टी से बने प्रोडक्ट्स, जैसे कुल्हड़, मटका, क्ले कप्स, डेकोरेटिव आइटम्स, टेराकोटा पॉट्स, अर्थनवेयर कुकवेयर और अब तो कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स भी क्ले कुकवेयर यूज़ करने लग गए हैं।
0: और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात भी है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल माना जाता है, क्योंकि ये मेंटेन करता है नेचुरल मिनरल्स को।
1: बिल्कुल, और अब लोग हेल्थ कॉन्शियस और इको कॉन्शियस दोनों हो रहे हैं। इसी ट्रेंड को स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स ने स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया है।
0: इमेजिन करो नेहल, एक छोटा सा गांव जहां एक फैमिली जनरेशन से मिट्टी के बर्तन बनाती आ रही है, लेकिन पहले उनका काम सिर्फ लोकल मार्केट तक ही लिमिटेड था।
1: और फिर एक दिन उनके बेटे ने सोचा, व्हाई नॉट सेल दिस प्रोडक्ट्स ऑनलाइन।
0: बस वहीं से सफर शुरू हुआ स्टार्टअप का। इंस्टाग्राम पेज बना, रील्स अपलोड हुई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिसनिंग हुई और धीरे धीरे ऑर्डर्स पूरे इंडिया से आने लगे।
1: यही तो पावर है स्टार्टअप्स की, ट्रेडिशनल आर्ट प्लस डिजिटल मार्केटिंग, यानी सक्सेसफुल बिजनेस।
0: और ऑनेस्टली, आज के यूथ के पास आइडियाज तो बहुत हैं, बस कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए।
1: आर्यन, एक सीरियस पॉइंट भी है यहाँ।

0: प्लास्टिक पॉल्यूशन दुनिया के लिए एक ह्यूज प्रॉब्लम बन चुका है।
1: एग्जैक्टली नेहल, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज होने के बाद एनवायरनमेंट में हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक रहते हैं, लेकिन मिट्टी के प्रोडक्ट्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं।
0: मतलब नेचर फ्रेंडली भी और स्टाइलिश भी। आज कैफेज क्ले कप्स यूज कर रहे हैं बिकॉज कस्टमर्स को देसी एस्थेटिक बहुत पसंद आ रहा है।
1: और ऑनेस्टली कुल्लड़ वाली चाय का टेस्ट ही अलग होता है यार।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: आज इंडिया स्टार्टअप रिनोवेशन के फेज में है और अर्थनवेयर जैसा स्टार्टअप रूरल यूथ के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है।
0: बिल्कुल, इसमें इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम होता है और क्रिएटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है।
1: और सोशल मीडिया ने तो गेम ही चेंज कर दिया है, आज एक सिंपल रील भी बिजनेस को वायरल कर सकती है।
0: दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई यूनिक आइडिया है तो उसे इग्नोर मत करिए, कभी कभी छोटा आइडिया भी बड़ा ब्रांड बन जाता है।
1: चलो तो नेहल, एक फन क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे कि अगर तुम्हारा अर्थनवे स्टार्टअप होता तो उसका नाम क्या होता?
0: मिट्टी वाइब्स।
1: वाओ यार, स्टाइलिश नेम है यार। मेरा होता देसी क्ले स्टूडियो।
0: दोस्तों, आप भी सोचिए अगर आपका स्टार्टअप होता तो उसका नाम क्या होता।
1: तो दोस्तों, हर सक्सेसफुल स्टार्टअप एक स्मॉल आइडिया से ही स्टार्ट होता है,
0: और फेलियर से डर के सपने छोड़ देना वो सबसे बड़ी हार होती है।
1: और अगर आप पेशनेट हो, हार्ड वर्किंग हो और अपने आइडियाज पर बिलीव करते हो तो सक्सेस जरूर मिलेगी।
0: और याद रखिए, स्टार्टअप सिर्फ पैसे कमाने का सोर्स नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी नाम है।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे एक सिंपल सी मिट्टी की दुनिया के लिए इनोवेशन और इंस्पिरेशन दोनों बन सकती हैं,
0: और कैसे अर्थनवेयर स्टार्टअप्स इंडियन कल्चर को मॉडर्न दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं।

0: शाम ढलती है तो कहानियाँ याद आती हैं, पुरानी इमारतें भी अपनी जुबान सुनाती हैं, पहाड़ों की वादियों से एक सुकून सा मिलता है, हिस्ट्री का हर पन्ना एक नया एहसास दिलाता है।
1: और अब हम लेकर आए हैं एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जिसे देखकर सिर्फ आंखें नहीं दिल भी शांत हो जाता है, तवांग मॉनेस्ट्री।
0: दोस्तों, इंडिया सिर्फ फेस्टिवल और कल्चर्स का देश नहीं बल्कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और स्पिरिचुअल प्लेसेस का भी खजाना है।
1: और उन्हीं खूबसूरत जगहों में से एक है तवांग मॉनेस्ट्री, जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
0: ये मॉनेस्ट्री सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री मानी जाती है।
1: इमेजिन करिए दोस्तों, पहाड़ों के बीच बादलों के करीब एक ऐसी जगह जहां हर तरफ शांति ही शांति हो, बस वही है तवांग मॉनेस्ट्री।
0: नेहल, क्या आपको पता है कि तवांग मॉनेस्ट्री की फाउंडेशन 7th सेंचुरी में रखी गई थी?
1: यस, इस मॉनेस्ट्री को मेराक लामा लॉर्डरे ग्यात्सो ने एस्टेब्लिश किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ 5th दलाई लामा।
0: और यही बात इस जगह को और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है कि यह मॉन्यूमेंट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि बुद्धिस्ट कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का सिंबल भी है।
1: बिल्कुल दोस्तों, तवांग मॉनेस्ट्री का ओरिजिनल नेम है गोल्डन नैमगे लहात्से, जिसका मतलब होता है सेलेशियल पैराडाइज इन अ क्लियर नाइट।
0: नेहल, जब नाम ही इतना सुकून देने वाला है तो जगह कितनी पीसफुल होगी।
1: आर्यन, ऑनेस्टली मुझे लगता है नेचर लवर्स के लिए तवांग हेवन से कम नहीं है।
0: एब्सोल्युटली, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, कोल्ड ब्रीज, बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स जो कि हवा में लहराते हैं, और मॉनेस्ट्री की गोल्डन रूफ्स सनलाइट में शाइन करती हुई, पूरा सिनेमेटिक वाइब देता है यार।
1: और सबसे ब्यूटीफुल चीज वहां की साइलेंस।
0: एग्जैक्टली, आज की फास्ट लाइफ में जहां हर जगह सिर्फ और सिर्फ आवाजें हैं, तवांग मॉनेस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां इंसान खुद से कनेक्टेड कर पाता है।
1: दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं होता, कभी कभी एक जगह का एटमॉस्फेयर ही दिल को शांत कर देता है।
0: और तवांग मॉनेस्ट्री वही फील देती है। वहां मॉन्क्स मेडिटेशन कराते हैं, प्रेयर्स होती हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे एनवायरनमेंट में महसूस होती है।
1: और दोस्तों, इमेजिन करिए सुबह का सीन, कोल्ड वेदर, हल्की सनलाइट और मॉनेस्ट्री में बजती प्रेयर बेल्स।
0: बस यही तो मोमेंट्स होते हैं, लाइफ भर याद रहते हैं।
1: और आज सिर्फ इंडिया से नहीं, फॉरेन टूरिस्ट से भी जगह को एक्सप्लोर करने आते हैं।
0: वहाँ की लोकल कल्चर भी बहुत यूनिक है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, फेस्टिवल फूड्स और वार्म हॉस्पिटलिटी टूरिस्ट को इतना इंस्टेंट कनेक्ट कर देती है।
1: और ऑनेस्टली आर्यन, मुझे लगता है इंडिया की ब्यूटी इसी डाइवर्सिटी में है।
0: और बिल्कुल, हर स्टेट एक अलग कहानी सुनाता है।

0: शाम की हल्की सी रोशनी सपनों का एक नया सफ़र लाई है। हर उस कलम को सलाम जिसने दुनिया को कहानियाँ सुनाई हैं। कभी हंसी, कभी आंसू, कभी जंग तो कभी प्यार लिखा। आज हम बात करेंगे उन हीरोज़ की जिन्होंने स्क्रीन पर पूरा संसार लिखा।
1: अब हमारा टॉपिक है यूथ एम्पावरमेंट थ्रू स्क्रीन राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो कैमरा के पीछे रहकर पूरी दुनिया की इमोशंस कंट्रोल करते हैं, उन राइटर्स की जो सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि जनरेशन की थिंकिंग लिखते हैं।
0: दोस्तों, जब भी हम कोई मूवी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं या कोई इमोशनल सीन देखकर रो देते हैं तो हम एक्टर्स की तारीफ करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि वो डायलॉग लिखा किसने?

0: वो सीन इमेजिन किसने किया, वो कहानी बनाई किसने, इसका आंसर है एक स्क्रीन राइटर ने।
1: बिल्कुल आर्यन, स्क्रीन राइटर वही इंसान होता है जो एक ब्लैंक पेज को दुनिया का सबसे बड़ा इमोशन बना देता है। एक स्क्रीन राइटर सिर्फ स्टोरी नहीं लिखता, वो सोसाइटी का मिरर होता है। अगर आज हमारा यूथ मोटिवेशनल मूवीज़ देखकर इंस्पायर्ड हो रहा है और लोग डिप्रेशन से निकलकर लाइफ को नए तरीके से देख रहे हैं, तो उसके पीछे किसी राइटर की सोच होती है।
0: और सबसे खास बात कि आज के यूथ के लिए स्क्रीन राइटिंग एक पावरफुल करियर ऑप्शन बन चुका है। आज OTT प्लेटफॉर्म्स, YouTube, शॉर्ट फिल्म्स, रील्स, पॉडकास्ट, हर जगह कंटेंट की डिमांड है। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, इमोशंस हैं, ऑब्जर्वेशन है, तो आप भी एक सक्सेसफुल राइटर बन सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, आज का यूथ सिर्फ नौकरी नहीं आइडेंटिटी चाहता है, और राइटिंग एक ऐसी फील्ड है जहां आप अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा सकते हो। आज एक सिंपल मोबाइल फ़ोन से भी कहानियां दुनिया तक जा रही है। किसी गांव का लड़का, किसी छोटे शहर की लड़की आज अपनी स्टोरीज नेटफ्लिक्स तक पहुंचा रहे हैं। यही तो है एम्पावरमेंट।
0: एग्जैक्टली, पहले अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थी, लेकिन अब डिजिटल दुनिया ने हर टैलेंटेड यूथ को एक प्लेटफॉर्म दिया है। आज अगर आप अच्छा लिखते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मिनी स्टोरीज लिख सकते हो, यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो, शॉर्ट फिल्म्स क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्क्रीन राइटिंग सिर्फ पैसा नहीं देता, रिस्पेक्ट भी देता है।
1: और एक राइटर की पावर का अंदाज़ा इस बात से लगाओ दोस्तों, एक डायलॉग पूरी जनरेशन की थिंकिंग चेंज कर देता है। जैसे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ऑल इज़ वेल, ये सिर्फ डायलॉग्स नहीं, इमोशंस हैं।

0: दोस्तों, शाम ढल रही है धीरे धीरे और हवाओं में एक सुकून सा है। कहानियों का एक सफर और संगीत का एक जुनून सा है। कुछ अल्फाज दिल को छू जाएंगे, कुछ सुर रूह में उतर जाएंगे। आज के इस महफिल में दो ऐसे सितारों की बात होगी जो दुनिया को इंस्पायर कर जाएंगे।
1: अब हम बात करने वाले हैं दो ऐसे लीजेंड्स की जिन्होंने अपनी कला से दुनिया को एक नई डायरेक्शन दी है। एक तरफ है कहानियों के जादूगर और दूसरी तरफ है म्यूजिक के मैजिशियन। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा स्पेशल टॉपिक आर के नारायण और स्टीव वंडर।
0: दोस्तों, अगर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात हो और आर के नारायण का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने सिंपल इंडियन लाइफ को इतनी खूबसूरती से लिखा कि पूरी दुनिया इंडिया को उनकी स्टोरीज के थ्रू समझने लगी। उनका जन्म 1906 में चेन्नई में हुआ था और उन्होंने एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया था जिसका नाम था मालगुड़ी।
1: बिल्कुल आर्यन, और मालगुड़ी सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो इमोशंस का शहर था। वहाँ के कैरेक्टर्स, उनकी सिंप्लिसिटी, उनके स्ट्रगल्स, सब कुछ इतना रियल लगता था कि रीडर्स को अपनी ही लाइफ नज़र नहीं आती थी। और दोस्तों, उनकी फेमस बुक मालगुड़ी डेज आज भी लोग बड़े प्यार से पढ़ते हैं।
0: और एक इंटरेस्टिंग बात निहल, कि आर के नारायण जी ने कभी लाउड स्टोरीज नहीं लिखी, ना बड़े एक्शंस, ना ओवर ड्रामा, बस सिंपल लाइफ की ब्यूटीफुल रियलिटीज़। इसी वजह से उनकी राइटिंग टाइमलेस बन गई।
1: दोस्तों, आर के नारायण हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन देते हैं, सिंप्लिसिटी इज़ पावरफुल। आज के यूथ को लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना ज़रूरी है, लेकिन नारायण जी ने ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया।
0: और राइटर्स के लिए तो एक इंस्पिरेशन है ही अपनी, लेकिन हर इंसान उनसे एक बात सीख जरूर सकता है कि अपनी रूट्स कभी मत भूलो। उन्होंने इंडियन कल्चर को दुनिया के सामने इतना प्राउडली प्रेजेंट किया कि दोस्तों, यही असली आर्ट होती है।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: तो दोस्तों, कहानियों की दुनिया से अब चलते हैं म्यूजिक की दुनिया में और बात करते हैं एक ऐसे आर्टिस्ट की जिन्होंने दुनिया को सिखाया लिमिटेशन सिर्फ सोच में होती है।
5: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी सिंगर स्टीव वंडर की। एक ऐसे आर्टिस्ट जो बचपन से विजुअली इम्पेयर्ड थे, लेकिन उनका टैलेंट दुनिया के लिए रोशनी बन गया।
1: बिल्कुल, स्टीव वंडर ने सिर्फ म्यूजिक नहीं बनाया, उन्होंने इमोशंस को सुर दिए। उन्होंने बहुत छोटी एज में म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री की और फिर जैसे सॉन्ग्स दिए आज भी दुनिया सुनती है।
5: और उनकी लाइफ का सबसे इंस्पायरिंग पार्ट पता है क्या है? उन्होंने कभी अपनी डिसेबिलिटी को वीकनेस नहीं बनने दिया। वो कहते थे कि जस्ट बिकॉज अ मैन लैक द यूज ऑफ हिज आईज डजंट मीन ही लैक विजन। क्या बात है यार,
1: आज का यूथ

0: छोटी छोटी फेलियर से टूट जाता है, लेकिन स्टीव वंडर की जर्नी हमें सिखाती है अगर पेशेंस स्ट्रांग हो तो दुनिया का कोई चैलेंज आपको रोक नहीं सकता।
1: और दोस्तों, म्यूजिक हो या राइटिंग, दोनों में एक चीज़ कॉमन सीखते हैं कि बिलीव इन योर टैलेंट। चाहे लोग सपोर्ट करें या ना करें, आपको खुद पर भरोसा होना ही चाहिए।
0: एक तरफ आर के नारायण जिन्होंने वर्ड से दुनिया जीती और दूसरी तरफ स्टीव वंडर जिन्होंने म्यूजिक से दिल जीता। दोनों अलग फील्ड्स में थे लेकिन दोनों का मिशन सेम था, लोगों के इमोशंस को टच करना।
1: एग्जैक्टली, और इसीलिए आज भी ये दोनों लेजेंड्स अमर हैं। एक की कहानियाँ कभी पुरानी नहीं होती और एक के गाने कभी आउटडेटेड नहीं लगते। यही होती है दोस्तों असली लेगेसी।

0: में अलग ही मजा है। कहानी सुरों की मिठास होगी, कहानी डायलॉग्स का जुनून चलेगा, और आज का शो दोस्तों टैलेंट और पैशन के नाम रहेगा।
1: और आज का इस खूबसूरत शाम में अब हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे आर्टिस्ट की जिन्होंने अपने टैलेंट से दुनिया में अलग पहचान बनाई। एक एक्टर जिनकी पर्सनैलिटी दुनिया भर में फेमस है, एक सिंगर जिनकी आवाज़ हर मूड को एनर्जेटिक बना देती है, और एक एक्टर जिनकी रियलिस्टिक एक्टिंग दिल जीत लेती है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है रॉबर्ट पैटिंसन, बेनी दयाल, देबियेंदु शर्मा।
0: तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हॉलीवुड के चार्मिंग स्टार रॉबर्ट पैटिसन की। रॉबर्ट पैटिसन ने अपनी एक्टिंग और पर्सनैलिटी से मिलियंस ऑफ फैंस बनाए हैं। उन्हें दुनिया ने सबसे ज़्यादा पहचाना ट्विलाइट मूवीज़ की सीरीज से, और एडवर्ड क्यूलेन का कैरेक्टर आज भी फैंस के दिल में जिंदा है।
1: बिल्कुल आर्यन, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉबर्ट सिर्फ रोमांटिक रोल्स तक लिमिटेड नहीं रहे, उन्होंने हर टाइप के चैलेंजिंग रोल्स किए। और फिर जब उन्होंने द बैटमैन में बैटमैन का रोल प्ले किया, तब लोगों को उनकी एक्टिंग का एक और पावरफुल साइड देखने को मिला।
0: और दोस्तों रॉबर्ट पैटिसन की जर्नी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी देती है कि नेवर स्टे इन वन कंफर्ट जोन। उन्हें हर बार खुद को री इन्वेंट किया है, यही चीज़ यूथ को इंस्पायर भी करती है।
1: अब बात करते हैं म्यूजिक की दुनिया के एनर्जेटिक स्टार की, बेनी दयाल। दोस्तों, बेनी दयाल की आवाज़ में एक अलग ही फ्रेशनेस है, चाहे रोमांटिक सॉन्ग्स हो, पार्टी ट्रैक्स हो, या मोटिवेशनल वाइब्स, उनकी सिंगिंग इंस्टेंटली मूड चेंज कर देती है।
0: बिल्कुल निहल, और उनके कुछ सुपरहिट सॉन्ग तो आज भी हर प्लेलिस्ट का पार्ट है, जैसे कि बदतमीज दिल, लुट ले गया, उड़े दिल बेफिक्रे। और दोस्तों उनकी एनर्जी लाइव परफॉर्मेंस में नेक्स्ट लेवल होती है।
1: और एक बात जो बेनी दयाल को स्पेशल बनाती है, वो सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और मल्टीपल लैंग्वेज में गाना गा चुके हैं। ये दिखाता है कि टैलेंट की कोई लैंग्वेज नहीं होती।
0: और अब बात करते हैं कि ऐसे एक्टर की जिनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा रियल और रॉ फील देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ देबियेंदु शर्मा की। उन्होंने अपनी पावरफुल एक्टिंग से OTT और बॉलीवुड दोनों में अलग पहचान बनाई है।
1: बिल्कुल, अगर दोस्तों आपने मिर्ज़ापुर देखी है तो उनकी एक्टिंग ज़रूर याद होगी। वो हर रोल को इतना नेचुरल बना देते हैं कि ऑडियंस कनेक्ट फील करती है।
0: और दोस्तों देबियेंदु शर्मा का स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। उन्हें स्लोली इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, कोई ओवरनाइट सक्सेस उन्हें नहीं मिली, बस हार्डवर्क, पेशेंस और टैलेंट, यही रियल मोटिवेशन होती है।
1: अगर दोस्तों ध्यान से देखो तो इन तीनों आर्टिस्ट में से एक चीज़ कॉमन है, पेशेंस। रॉबर्ट पैटिंसन ने एक्टिंग को नए लेवल पर ले गया, बेनी दयाल ने म्यूजिक में पॉजिटिविटी भर दी, और डेबिन शर्मा ने रियलिस्टिक एक्टिंग का मैजिक दिखाया।
0: नेहल, और एक इम्पॉर्टेंट बात भी है कि सक्सेस सिर्फ ग्लैमरस नहीं होती, उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी होता है, फेलियर्स भी होते हैं, स्ट्रगल भी होता है, लेकिन जो अपने ड्रीम्स पर बिलीव करता है वही आगे बढ़ता है।

0: शाम की ठंडी हवाओं में एक पुरानी सी बात है, हर आवाज़ में छुपी एक खूबसूरत याद है। कभी गीतों ने दिल जीता तो कभी खबरों ने साथ निभाया। रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं, हर घर का जज्बात है।
1: और आज की इस सुहानी शाम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आवाज़ की जिसने जनरेशंस को जोड़ा है, एक ऐसा साथी जो कभी अकेला नहीं छोड़ता। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है 90 ईयर्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, यानी हम बात करेंगे रेडियो और सीनियर सिटीजन्स की।
0: दोस्तों, आज से लगभग 90 साल पहले इंडिया में एक आवाज़ गूंजी थी, एक ऐसी आवाज़ जिसने देश को एक साथ जोड़ा, और उस आवाज़ का नाम था ऑल इंडिया रेडियो, या फिर प्यार से कहे जाने वाला आकाशवाणी।
1: बिल्कुल आर्यन, आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं है, वो हर जगह की पहचान है। सुबह की भक्ति हो, शाम के गीत हो, खेती की जानकारी हो या देश की खबरें, हर चीज़ रेडियो से जुड़ी होती है।
0: और दोस्तों, उस टाइम ना स्मार्टफोन्स थे ना इंटरनेट था, लेकिन फिर भी पूरा देश कनेक्टेड रहता था, क्योंकि हर घर में एक रेडियो तो होता ही था और उसके आसपास पूरा परिवार बैठता था। और वो क्या खूबसूरत ज़माना था यार।
1: बिल्कुल सही कहा, आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स की, तो क्योंकि रेडियो और सीनियर सिटीजन्स का कनेक्शन बहुत इमोशनल है। आज भी बहुत से दादा दादी, नाना नानी सुबह उठकर रेडियो सुनते हैं। उनके लिए रेडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक दोस्त है।
0: बिल्कुल निहल, आज के डिजिटल एरा में लोग मोबाइल स्क्रॉलिंग में बिजी हो गए हैं, लेकिन रेडियो में एक अलग ही सुकून है। सीनियर

0: दोस्तों, हर दिन की तरह आज का दिन भी इतिहास के पन्नों में कई खास कहानियां समेटे हुए हैं। चलिए चलते हैं आज के दिन की इस दिलचस्प यात्रा पर और जानते हैं आज का इतिहास। ईयर 1846 में आज ही के दिन मैक्सिकन अमेरिकन वॉर की शुरुआत हुई थी। यह युद्ध अमेरिका और मैक्सिको के बीच हुआ था, जिसने बाद में कई नए क्षेत्रों की सीमाएं तय की।
1: और 1917 में आर लेडी ऑफ फातिमा की पहली घटना पुर्तगाल में हुई, जिसे आज भी दुनिया भर में धार्मिक आस्था से जोड़ा जाता है।
0: और 1964 में प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर रोनी कार्लेमन का जन्म हुआ, जो 8 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं।
1: और 2010 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने कुछ देशों पर निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया।
0: और 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पदभार संभाला।
1: और 1638 में दिल्ली में मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किले के निर्माण की शुरुआत की।
0: और 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र शुरू हुआ, जिसमें लोकसभा व राज्यसभा का गठन हुआ।
1: तो दोस्तों, बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। तो IPL 2026 आज का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रायपुर में खेला जाएगा 7:30 PM से।
0: अब बात करें कल के IPL मैच की, तो ये गुजरात टाइटंस और सनराइज हैदराबाद के बीच अहमदाबाद में खेला गया, जिसमें गुजरात टाइटंस ने जीत की लय कायम रखते हुए सनराइज हैदराबाद के खिलाफ 82 रन से जीत दर्ज की और पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन हासिल कर ली।

0: दोस्तों, बातें तो आपसे हम बहुत सारी करना चाहते हैं अभी भी, लेकिन जो वक्त की घड़ी है वो हमें ज़्यादा इजाज़त देती नहीं है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं था आपका रेडियो दोस्त आर्यन, और मेरे साथ थी
1: नेहल,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी युवा श्रोताओं ने सुना अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं, लिए चलते हैं आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी

0: प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला नगमा हमने आपके लिए लिया है फिल्म भूल भुलैया से। आवाज़ केके की है।

हेके की आवाज़ में अभी आप भुलभुलैया फिल्म का ही नगमा सुन रहे थे। और आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले नगमे की ओर, जिसे हमने आपके लिए लिया है फिल्म एयरलिफ्ट से। आवाज़ अरिजीत सिंह की है।

मोहित चौहान और श्रेया घोषाल के बाद आइए अब सुनते हैं जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़, फिल्म जॉली LLP 2।

आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम के आखिरी नगमे की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म जन्नत 2 से। शफाकत अमानत अली की आवाज़ में सुनते हैं ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। पहले हिंदी में, उसके बाद सुनिएगा जिले की चिट्ठी और 6:45 का वक्त रहेगा राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया। नतीजों में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय की गई और प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित। फलोदी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए ये निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि इस खरीफ सीजन के लिए किसानों को करीब 2,60,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सूरजमुखी के बीजों के लिए की गई है। इसके अलावा कपास के दाम 557 रुपए और तिल के 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं। नई दरों के अनुसार ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2,461 रुपए, हाइब्रिड ज्वार का 4,023 रुपए और बाजरा का 2,900 रुपए प्रति क्विंटल होगा। अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय की गई है। इस सीजन में सरकार द्वारा 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल की खरीद का अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की लागत से कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। देश भर में कुल 85.20% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा परिणामों में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। छात्राओं का नतीजा 88.86% रहा, जबकि छात्रों का परिणाम लगभग 82% रहा। बोर्ड के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय की इन परीक्षाओं में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 15,07,000 से अधिक बच्चे सफल रहे हैं। वहीं अजमेर रीजन का कुल परीक्षा परिणाम 86.78% रहा। यहां 88,000 से अधिक विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिसमें से 76,469 विद्यार्थी सफल हुए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वास जताया है कि कृषि शिक्षा के जरिए देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। वे आज कोटा में कृषि विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री बागड़े ने कहा कि किसानों को उन्नत बीज और नई तकनीक से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने युवाओं से स्वरोजगार अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में ड्रोन, AI और स्टार्टअप जैसे नवाचारों को अपनाने को कहा। दीक्षांत समारोह में 358 विद्यार्थियों को डिग्रियां और 14 को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। राज्यपाल ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की नई प्रयोगशालाओं और अकादमिक भवनों का लोकार्पण भी किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। नए परीक्षा कैलेंडर के अनुसार वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन आगामी 28 जून को किया जाएगा। वहीं लिपिक ग्रेड द्वितीय और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2025 5 जुलाई को होगी। बोर्ड ने पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की तारीख में आवश्यक कारणों से बदलाव किया है। अब ये परीक्षा 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पिछले कैलेंडर में दी गई अन्य परीक्षाओं की तारीखें यथावत रहेंगी। राज्य पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़ा और रिकॉर्ड में हेरफेर करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों में मुख्य अभियुक्त राजेश कुमार और राजस्थान लोक सेवा आयोग का कर्मचारी मान सिंह शामिल है। जांच में सामने आया है कि राजेश ने अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास कर नियुक्ति प्राप्त की थी। बाद में उसने आयोग के रिकॉर्ड में फोटो बदलने के लिए मान सिंह से 8 लाख रुपए में सौदा किया। SOG ने राजेश को इसी महीने की 18 तारीख तक पुलिस रिमांड पर लिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि यमुना जल समझौते को लेकर हरियाणा सरकार के साथ महत्वपूर्ण सहमति बनी है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद श्री शर्मा ने मीडिया को बताया कि यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है।
1: किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत हुई है। एक हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी उसकी पाइपलाइन उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो उसके लिए समय तय हुआ है। एक हरियाणा और राजस्थान का RRTS का मामला था, उसमें सहमति बनी है कि वो हमारे राजस्थान तक, दिल्ली हरियाणा और राजस्थान तक वो पहुंचे। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है।
0: बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि किशाऊ बांध परियोजना के काम में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बांध के बनने से हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत 5 जिलों के लिए 18 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें दौसा, चूरू, डीडवाना कुचामन, फलोदी और बालोतरा के जिला उत्पाद शामिल हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज जयपुर में हुई बैठक में परियोजनाओं के पहले चरण के लिए 10,76,00,000 रुपए जारी किए गए। इस राशि से दौसा और डीडवाना कुचामन में पत्थर उद्योग, चूरू में लकड़ी उत्पाद, फलोदी में सोना मुखी भंडारण और बालोतरा में टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग के लिए आधुनिक केंद्र और

लैब बनाई जाएंगी। इससे स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता सुधारकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने आज ही स्वायत्त शासन विभाग और पीएचईडी के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के शहरों में संचालित सीवरेज और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में पड़ रही प्रचंड गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज

0: निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में पड़ रही प्रचंड गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और बीकानेर जिले लू की चपेट में रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज फलोदी सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। जैसलमेर में दिन का तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं बाड़मेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। जिला मुख्यालयों सहित कस्बों में दोपहर के समय बाजार सूने नजर आए। राजधानी जयपुर में भी लू जैसे हालात रहे। कई स्थानों पर प्रशासन ने सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया। मौसम केंद्र जयपुर ने सीमावर्ती जिलों के लिए कल भी भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है, साथ ही कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। इस बीच आज कई उत्तर पूर्वी जिलों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से 2 दिन का सघन नाकाबंदी अभियान चलाया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर आयोजित इस अभियान के तहत 727 स्थानों पर बड़ी संख्या में वाहनों की कड़ी जांच की गई। अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 7,000 से अधिक लोगों के चालान किए गए। प्रदेश भर में इन दिनों डिजिटल जनगणना 2027 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने स्वगणना कर लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। शहर में जगह जगह हमारी जनगणना हमारा अधिकार जैसे नारों वाले पोस्टर लगाकर लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं झुंझुनू में आज प्रगणकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। झुंझुनू जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में बड़ी संख्या में खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि पिछले साल जनवरी से इस वर्ष 2026 तक जिले में विशेष अभियान के तहत कुल 837 सैंपल लिए गए थे। इन सैंपल्स में से 223 नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कल नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य समावेशी शासन को मजबूत करना, नीतिगत पहुंच बढ़ाना और पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया। नतीजों में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय की गई और प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित। फलोदी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री से ऊपर पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं लक्ष्मी चंद नागर। हाड़ौती अंचल का 12 जिला प्राचीन मंदिरों, शेरगढ़ किले और अन्य पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इस कृषि प्रधान क्षेत्र को वराह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इन दिनों 12 जिला भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में है। दिन का तापमान हाल ही में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से लोग बेहाल हो रहे हैं। वहीं अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। चिकित्सा संस्थानों में लू और तापघात के रोगियों के उपचार के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, साथ ही जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। 15 दिन के ग्राम रथ अभियान के तहत जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ग्राम रथ अंता, अट्रू, छबड़ा और किशनगंज शाहबाद क्षेत्र के गांवों में इन योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के बारे में भी ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों को बताया जा रहा है। एलईडी मोबाइल वैन के जरिए ऑडियो वीडियो प्रस्तुति हो रही है। वहीं नुक्कड़ नाटक और संध्या चौपालों में भी लोगों की अच्छी भागीदारी।

0: गिरफ्तारी रही है। अब तक अंता, मियाड़ा, अटरू, रिछंदा, किशनगंज और छबड़ा सहित विभिन्न पंचायतों में ग्राम रथ पहुंचने पर ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्वागत किया और विभिन्न जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी ली। जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने अंता की तुलसा पंचायत में ग्राम रथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में श्री देवासी ने बताया कि इस अभियान के तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही आम लोगों की समस्याओं और सुझावों पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। इसके लिए ग्राम रथों में शिकायत और सुझाव पेटिका लगाई गई है। जिला प्रभारी मंत्री ने बामला ग्राम पंचायत पर रात्रि चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बाल मुकुंद असावा ने पिछले दिनों बारां जिले के कलेक्टर के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिले के विकास की प्राथमिकता बताई। श्री असावा ने सहरिया, बहुल, शाहबाद क्षेत्र का दौरा कर शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बास्तुनी के जनजातीय बालक छात्रावास का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए छात्रावास में पर्याप्त संख्या में कूलर और पंखे लगाने तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने छात्रावास परिसर की नियमित रूप से साफ सफाई करने को भी कहा। प्रमुख जनगणना अधिकारी और जिला कलेक्टर ने बीते दिनों स्वगणना कर जनगणना प्रक्रिया 2027 के पहले चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपना ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज करने की अपील की। जिले में जनगणना कार्य को सुव्यवस्थित संपन्न कराने के लिए 2242 प्रगणक और 377 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। जिले में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से आमजन की सुविधा के लिए 5 से 7 मई तक पासपोर्ट सेवा शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय विदेश सेवा के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विपुल देव ने बताया कि पासपोर्ट सेवाओं को अधिक सुलभ, सरल और अनुकूल बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से जिले में निवास करने वाले नागरिकों को अपने स्थानीय क्षेत्र में ही पासपोर्ट बनवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उनके समय और संसाधनों की बचत सुनिश्चित होगी। इसी क्रम में मोबाइल पासपोर्ट वैन के माध्यम से 3 दिवसीय पासपोर्ट शिविर का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन 40 पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अठरू बारा विधायक राधेश्याम बैरवा ने 4 मई से अपने विधानसभा क्षेत्र में आपका विधायक आपके द्वार जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू किया। करीब 1.5 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों और वार्ड स्तर पर लोगों की समस्या का त्वरित निस्तारण करना है। जिला कलेक्ट्रेट भवन पर पिछले दिनों हवाई हमला होने की आपात स्थिति की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान हवाई हमले की सूचना से समूचा क्षेत्र सायरन की आवाजों से गूंज उठा। बचाव और सुरक्षा दलों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किए। जिला कलेक्टर के साथ ही पुलिस अधीक्षक ने राहत और बचाव कार्य की कमान संभाली। साथ ही जिला मुख्यालय पर ब्लैक आउट कर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों की लाइटों को बंद करवाया गया। विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य में बारां में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। बारां जिले की विरासत और हमारे प्रयास विषय पर संगोष्ठी रखी गई। कार्यक्रम में कला संस्कृति विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी संदीप सिंह जादौन ने बताया कि जिले की ऐतिहासिक धरोहरें बारां की सांस्कृतिक पहचान है। इसके साथ ही बारां जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, केंद्रीय मंत्रिमंडल खरीफ विपणन सीजन 2026-27 सारु 14 साखारा सरकारी मोल माय बढ़ोतरी री मंजूरी दीनी। सीबीएसई 12वीं कक्षा रा इम्तिहान रो नतीजो जारी कीनो, लड़कियां बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, यमुना नदी रो पानी पाइप लेन रे जरिए राजस्थान लावण री मियाद तय करी ची। और प्रदेश रा आतुणी और लंकाऊ उगनी हल्का माए जबरदस्त गर्मी, फलौदी और जैसलमेर माए पारो 46 डिग्री सेल्सियस रे पार पुग्यो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, केंद्रीय मंत्रिमंडल विपणन सीजन 2026-27 सारू खरीफ री 14 साखां रा सरकारी मोल माय बढ़ोतरी री मंजूरी दे दीनी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली माय आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि मौजूदा खरीफ सीजन सारू किसाना ने करीब

0: 160,000 करोड़ रुपया चुकारो करियो चावेला।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव बतायो कि सब 32,622 रुपया प्रति क्विंटल री बढ़ोतरी सूरजमुखी रा बीजा सारू करी ची है। इंसा गई कपास रा दाम माए 557 रुपया और तिल्ली रा मोल माए 500 रुपया प्रति क्विंटल री बढ़ोतरी करण रो फैसलो करी चियो। इन फैसला पाछे ग्रेड ए धान रो मोल 2,461 रुपया, हाइब्रिड ज्वार रो मोल 4,023 रुपया और बाजरा रो मोल 2,900 रुपया प्रति क्विंटल फैला। तुअर री दाल रो सरकारी मोल 8,450 रुपया प्रति क्विंटल तय करी चियो है। श्री वैष्णव बतायो कि इन सीजन माए सरकार का न्यू 824 लाख मीट्रिक टन 32 शाखा री खरीदी रो अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 37,000 करोड़ रुपया खर्चों कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनावां सारू खास योजना ने ही मंजूरी दीनी।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 12वीं कक्षा री परीक्षा रा नतीजा रो आज ऐलान कर दिनो। ओ इम्तिहान देवनवाला मायो 85.20% पास फेक्या। इम्तिहान माए लड़कियां रो नतीजो 88.86%, जदके लड़का रो नतीजो 82.13% रह्यो। बोर्ड रे मुजब विज्ञान वाणिज्य और कला संकाय माए लीरीजी परीक्षा माए 17,68,000 विद्यार्थी शामिल फिया, जमायों 15,07,000 पास फेक्या। अजमेर रीजन इम्तिहान देवन वाला मायों 86.78% पास फेक्या। अजमेर रीजन माए इम्तिहान देवन वाला 88,118 विद्यार्थियां मायों 76,469 पास फेक्या। हालांकि अजमेर रीजन माए लाडला साल री तुलना माए ई साल पास फेवन वाला रो प्रतिशत कम रह्यो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आवता दिना ली जावन वाली न्यारी न्यारी भर्ती परीक्षावां रो नुवो कार्यक्रम जारी कीनो है। इन्हें मुजब वन पाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 28 जून न फैला, जदक सेकेंड ग्रेड क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2025 5 जुलाई न ली जावेला। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 24 जुलाई न फैला। राज्य पुलिस रो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 माए फर्जीवाड़ो करण और रिकॉर्ड माए हेराफेरी करण रा आरोप माए 2 जना ने गिरफ्तार कीना है। पकड़ी गया आरोपिता माए राजेश कुमार और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर रो कर्मचारी मान सिंह शामिल है। जांच रे दौरान राजेश कानियों वानी ठौड़ दूजा न बिठार परीक्षा पास कर और नौकरी हासिल करण रीठा पड़ी। इन पाछे वहां का न्यू RPSC रा रिकॉर्ड माए फोटो बदली करण सारू मान सिंह 8 लाख रुपया माए सौदो करण रेठा पड़ी। SOG आरोपित राजेश कुमार ने 18 मई ताई रिमांड माथे ले लीनो है। राज्यपाल और विश्वविद्यालय रा कुलाधिपति हरिभाव बागड़े कहो है कि खेतीबाड़ी में जुड़ी भणाई लिखाई रे जरिए देश माए खाद्य सुरक्षा तय करी जा सके है। वे आज कोटा माए कृषि विश्वविद्यालय रा 9वां दीक्षांत समारोह माए बोल रहा है। श्री बागड़े कहो कि किसाना ने उन्नत बीज और नुवी तकनीक जोड़ और खुदरेपाण उबा करया जा सके है। राज्यपाल नौजवानों नौकरी करण वाला री बजाय नौकरी देवन वाला बनबा सारू कहो। वह खेतीबाड़ी माए ड्रोन AI और स्टार्टअप काम लेवन सारू कहो। जलसा माए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणाई नौजवानों तालीम ने किसाना और देश का भला सारू काम लेवन बाबत कहो। दीक्षांत समारोह में 358 विद्यार्थियों ने डिग्रियां और 14 विद्यार्थियों ने सोना।

0: तमगा देर नवा जीतिया। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। यमुना नदी रा पानी जुड़िया करार बारा माए राजस्थान और हरियाणा सरकार बीच खास सहमति बनी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज नई दिल्ली माए जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल और हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सागे मीटिंग पछ आ जानकारी दीनी। श्री शर्मा कहो कि यमुना नदी रो पानी पाइप लेन रे जरिए राजस्थान लावण रिमियाद तय करती रीची है।
1: किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत हुई है। एक हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी उसकी पाइपलाइन उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो उसके लिए समय तय हुआ है। एक हरियाणा और राजस्थान का RRTS का मामला था उसमें सहमति बनी है कि वो हमारे राजस्थान तक दिल्ली हरियाणा और राजस्थान तक वो पहुंचे। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है।
0: मीटिंग पाछे हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतायो कि किसाऊ बांध बन जावण हरियाणा राजस्थान और दिल्ली माए पानी री समस्या हमेशा सारू खत्म भ जावेला। राज्य सरकार एक जिला एक उत्पाद नीति रा तहत 5 जिला सारू 18 करोड़ रुपए बत्ता खर्च वाली परियोजनावां मंजूर कीनी है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माए राखी जी मीटिंग माए दौसा चूरू डीडवाना कुचामन फलौदी और बालोतरा माए आंक कामा सारू 10,76,00,000 रुपया जारी करी चिया। इन तहत दौसा और डीडवाना कुचामन माए भाटा उद्योग चूरू माए लकड़ियों बनिया सामान फलौदी माए सोना मुखी भंडारण और बालोतरा माए टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग सारू नुआ सेंटर और लैब खोलिया जावेला। राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत बनावण और अपराधियां माथे काबू करण सारू पुलिस मुख्यालय री ओर 2 दिन रो नाकाबंदी अभियान चलाई चियो। अभियान रा तहत 727 ठोणा गाड़ियां री जांच करी ची। अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह बतायो के जांच रे दौरान 7,000 बत्ता चालान करी चिया। प्रदेश में डिजिटल जनगणना 2027 रे बारा में जागरूकता अभियान चलायो जा रियो है। भीलवाड़ा जिला में आई कलेक्टर SP सांसद और विधायक खुद डिजिटल जनगणना कीनी। शहर में न्यारी न्यारी ठोणा हमारी जनगणना हमारा अधिकार सरीखा नारा वाला पोस्टर लगार लोगों ने इनु जुड़बारी सीख दी जा रही है। झुंझुनू में आई आज प्रगणकां सारू खास शिविर लगाई चिया। अरब मौसम प्रदेश रा उत्तराद आतुणी और उगणी हल्का माए जोरदार गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग रे मुजब आज फलौदी सबू गर्म रहो जठे पारो 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी चियो। जैसलमेर माए दिन री बगत तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करी चियो। बाड़मेर बीकानेर और चित्तौड़गढ़ माए पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर कियो। जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा और बीकानेर माए लू रा हालात रहा। राजधानी जयपुर में आई लू सरीखा हालात बीच कई ठोणा प्रशासन सड़का माथे पानी रो छिड़काव करवायो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर पाकिस्तान नू लागोड़ी सरहद कने रा हल्का माए काले जबरदस्त लू बाजण सारू चेतायो है। इस आगे कई जिला सारू ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करी चियो है। इन बीच राज्य रा उत्तराद उगणी हल्का माए कठे कठे आज ही आंधी चाली और बिरखाफी। झुंझुनू जिला में मिलावटखोरी रे खिलाफ स्वास्थ्य विभाग री कार्रवाई रे दौरान मोटी तादाद माए खान पीन री चीजा रा नमूना मानक रे मुजब नी मिलिया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर बतायो कि जनवरी 2025 हूँ मार्च 2026 ताई जिला माए खास अभियान राते लिया जे 837 नमूना माए 223 ते मानका माथे खरा नी उतरिया। सलूम्बर रा PMC राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माए विधायक शांता अमृतलाल मीणा आज संविधान कक्ष और डिजिटल बाल पुस्तकालय जनता ने सौंपया। ई मौके विधायक विद्यार्थियों नुआ सुबितान रो फायदो लेवण बाबत कहो। वे DFMT मधु टीन शेट लगावण रा काम री शुरुआती कीनी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय गृह मंत्रालय सागे मिलर विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 सारू माई भारत प्लेटफॉर्म माथे राष्ट्रीय स्तर री सवाल जवाब री होड़ सरू कीनी है। प्रश्नोत्तरी होड़ आवता महीना फेवन वाला सीमावर्ती ग्राम सहभागिता कार्यक्रम माए नौजवाना रा चयन कार्यक्रम रो पहलो दौर है। ई ऑनलाइन होड़ में 20 मई तक भाग लिया।

0: हो जा सके है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स बीच मुकाबलो फैला और मैच अब थोड़ी देर पछे 7:30 बजे रायपुर में शुरू फैला। अंक तालिका में फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स 8वीं ठौड़ माथे है जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूजा पायदान माथे है। आखिर में खास समाचार एक फेर सुन ली रहो। केंद्रीय मंत्रिमंडल खरीफ विपणन सीजन 2026-27 सारू 14 शाखारा सरकारी मूल में बढ़ोतरी री मंजूरी दीनी। सीबीएसई 12वीं कक्षा रा इम्तिहान रो नतीजो जारी कीनो, लड़कियां बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो यमुना नदी रो पानी पाइप लेन रे जरिए राजस्थान लावण री मियाद तय करी जी। और प्रदेश रा तुणी और लंकाऊ उगनी हल्का में जबरदस्त गर्मी। पलौदी और जैसलमेर में पारो 46 डिग्री सेल्सियस रे पार पुग्यो। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार,
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम पेमा भाई, राम राम।
1: राम राम गायत्री भाई सा, राम राम।
0: खेती और घर कार्यक्रम हुणवा वाला संगला किसान भाई बेना ने आपानो
1: राम राम,
0: राम, राम सा। देखो पेमा भाई, कार्यक्रम रो टेम भी हो, किसान भाई रे वास्ते भांत भांतरी जानकारी और राजस्थानी गीतारो पिटारो लेन आया हाँ सा। अपने स्टूडियो में हर दिन कृषि विशेषज्ञ भी पधार रहे, नवी नवी जानकारियां देवे और आपा भी किसान भाई रे वास्ते मौसम संबंधी जानकारी है, योजना है और नरी हरी ऐसी जानकारी जो किसान भाई रे वास्ते फायदेमंद देवे वही लेना वहां सा।
1: सही कह रहे हो सा। और देखो सा, अपना चौपाल में आप बैठा हाँ, और चौपाल रे महीने आज आप जानकारी लेने आया हाँ, किचन गार्डन विस्तार का लाभ कई व्या करे। अब किचन गार्डन वेवे कई है, अंडो लाभ किस तरह ले सका, अंडो को विस्तार किस तरह सका, यह सब जानकारी आप आने कार्यक्रम में लेना आया सा।
0: बिल्कुल सा, पहला तो किसान भाई ने यह जानकारी करावा कि किचन गार्डन वेवे कही है सा। किचन गार्डन जो है वो अपने घर रे आंगन में ने या पचे छत पे साग सब्जियां है, फल है, वना ने उगाणो। बाकी कही है कि आपा कतरी बार देखा कि किसान भाई अरे खेता में भी जगह वेवे वे वटे भी उगावे है, लेकिन घर में ने भी नरी हरी ऐसा बगीचा है वेवे या छोड़ रखा वेवे वटे भी किसान भाई फल और साग सब्जियां उगाई सके है। वनडे अलावा किसान भाई जो है आपने गमला में ने और वंडे अलावा छत माते भी अनासक साग सब्जियां और फलाने उगाई सके, क्योंकि आजकल रे समय में यो केवल एक शौक नहीं है बल्कि यो एक स्वस्थ जीवन शैली री जरूरत भी बन गयो है सा।
1: सही कह रहे हो सार। अणी को सबों बड़ो फायदो है ताजी और रसायन मुक्त सब्जियां मलवो। बाजार में देखो कि मलवा वाली जितनी भी सब्जियां है वणा में देखो कीटनाशक रो इस्तेमाल किदो लखो वे, रासायनिक खाद रो इस्तेमाल किदो देखो वे। वणी में कही है कि देखो सब्जियां उगवा में तो देखो बढ़िया बीजा, लेकिन वहां में शुद्धता में कटन कटे कमी आई जावे। ताजी और जो जैविक खेती है वणी उपजी दी की जो सब्जियां है वह सेहतमंद वे, अपना शरीर वास्ते फायदेमंद वे, और वे अपने मले अपना घर का बगीचा।
0: आजकल आपा देखा कि दन बदन महंगाई बढ़वारे लारे लारे साग सब्जियां और फलारी कीमता भी लगातार बढ़ रही है। अगर आपने घर में बगीचो वेगा वटे आपा वंडो विस्तार करन, जिस तरह रोजमर्रा की जो चीजा है, जिस तरह की धनियो है, मरचा है, टमाटर है, पत्तेदार साग सब्जियां है, अगर आपा आपनो जो गार्डन है, आपनो जो बगीचो है वटे से आपा उगावांगा तो आपनो ये बाजार में ने खरीदवारी जरूरत नहीं पड़ेगा, जणू आपना जो मासिक बजट है वन में ने खासी बचत वे सकेगा सर।
1: सही कह रहे हो सर। अपना मानसिक स्वास्थ्य और तनाव संबंधी जानकारी देवा तो देखो बात यह है कि बगीचो जो आप लगावा वणी को यह है कि आप देखभाल करा, और देखभाल करा तो अपनो जो ध्यान है वणी में लागे देखो रहे, प्रकृति में अपना जुड़ाव रहे, तो अपना शरीर में अपना मानसिक जो तनाव है वणी में कटन कटे आप कमी लाई सका। पौधा की देखभाल जो करा वणा ने बढ़ता दिखा देखा, और प्रकृति के करीब यदि आप रहवा तो अपना मानसिक शांति महसूस हुए और अपना जो तनाव है वणियों आप मुक्ति पाई सका।
0: लारे लारे आपा जो भी बगीचा में ने काम कर रहा हाँ, या पचे गमला भी तैयार कर रहा हाँ, मिट्टी तैयार कर रहा हाँ, रुखड़ा ने पानी दे रहा हाँ, निराई गुड़ाई कर रहा

0: तो गायत्री भाई साहब, राजस्थानी लोकगीत सुनाया सा, कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और किसान भाई ने मौसम संबंधी जानकारी देवा सा। तो देखो साहब, मौसम विज्ञान विभाग जयपुर मलीला की सूचना रे आधार पर कहवा कि जो है बड़ो तापमान जो है 40 है 43 डिग्री के आसपास अधिकतम दिन को तापमान है और न्यूनतम तापमान जो है 25 डिग्री के आसपास बने लोगों ऐसा। और देखो सा, आवाड़ा दना में भी जो है मौसम शुष्क रहने वाली संभावना बताई मिली है। तो वे हिसाबों के है कि गर्मी जो है वो अपना उच्च स्तर पे है और किसान भाई ने सलाह देवा कि गर्मी का मौसम में अपनों खुद रो ध्यान रखना ऐसा।
1: बिल्कुल सा, लारे लारे अपने जो फसला है वनारो भी ध्यान रखनो है। और मिट्टी प्रबंधन री बात करा जटे तो रबी फसल री कटाई रे बाद में ने किसान भाइया ने मिट्टी पलटवा वाला हालू गहरी ग्रीष्मकालीन जुताई करवा सलाह देवा सा। या प्रक्रिया जो है या मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट और खरपतवार रा जतरा भी बीज है

0: वो रोगजनक जीवे वणाने नष्ट करवा में सहायक वेवे है। लारे लारे अणु मिट्टी में ने वायु रो संचार बढ़े है, नमी संरक्षण में ने सुधार वेवे है और मिट्टी री उर्वरता बनी रे लकी रेवे है। गहरी जुताई जो है वे आवा वाला फसल मौसम रे वास्ते खेत रे वास्ते हव तैयारी सुनिश्चित करे और स्वस्थ फसल वृद्धि में ने सहायक वेवे है। सर
1: सही कह रहे हो सर, अपना किसान भाई जो है भिंडी की उगाई भी कर मिली वेगा, तो उन्होंने कहवा कि भिंडी की फसल में खरपतवार की रोकथाम रे वास्ते अपने टेमू टेम पे जो है निराई गुड़ाई करता रहना चाहे, और येलो वेन मोजेक रोग जो है वनडे नियंत्रण रे वास्ते अपन ने फूल आवा क्यों पेली, और या पचे जरूरत के हिसाब अपन मेलाथियान 50 EC जो है अपन वन को 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के पानी में गोल मिलाई छिड़काव करना चाहे सा।
0: बैंगन री जटे बात करा तो बैंगन री फसल में ने तना और फल छेदक कीट रो प्रकोप वे सके सा, तो प्रभावित जो भी फल और शाखा है वना ने तोड़ ने नष्ट कर लेनो है और रोग रे फैलाव ने रोकवा रे वास्ते मेलाथियान 50 EC 10 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी रो छिड़काव करनो है सा।
1: और अपना किसान भाई जो है अपना खेत कुड़ा पर ऊपर देखो आम है, बेर है, अमरूद है, अणा के भी जो उगई कर मिली रखे, तो आम बेर और अमरूद का पेड़ जो है वना की छाल जो है खाली जो वह वाली जो इल्ली है वन में को प्रकोप लग जावे, और यदि इन तरह को प्रकोप लग जाओ तो कीट जो है अपना पेड़ री छाल ने खाई ने वना ने सुरंग बनाई देवे, और वनडे नियंत्रण वास्ते कई करनो है कि मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी रे महीने मिलाइन छिड़काव करनो चाहे सा।
0: पपीता री बात करा तो पपीता में ने लीफ कर्ल और मोजेक रोग रे नियंत्रण रे वास्ते जो भी प्रभावित रुखड़ो है वंडे उखाड़ नष्ट कर देनो है और वायरल रोग रे फैलाव ने रोकवा रे वास्ते मेलाथियान 50 EC 10 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी रो छिड़काव करनो है।
1: और नींबू वर्गीय फलदार पौधा जो है वना में फल गिरवा की जो समस्या वे वंडी रोकथाम रे वास्ते अपन कई करनो है कि प्लानोफिक्स हार्मोन नाम को जो अपना 1 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी रे महीने गोल मिलना छिड़काव करांगा, वणी को एक नींबू वर्गीय फलदार जो भी पौधा है वणा के गिरवा की जो समस्या है वह खत्म हो जाएगा।
0: अबे बात करा दुधारू जो भी किसान भाई ढांडा चोपा राख में लिया है, अने इनी गर्मी रे मौसम में ने जो भी ढांडा चोपा है वणा ने बार बार साफ और ठंडो पानी पिलावनो है, वणा ने छायादार और हवादार स्थान पे राखनो है और गर्मी कम करवारे वास्ते जो भी पशुशाला है वंडे आस पास में ने पानी रो छिड़काव करतो रहनो है और ढांडा चोपा ने सुबह और हांजे ठंडा समय में ने चारो देनो है और आहार में ने खनिज मिश्रण और इलेक्ट्रोलाइट भी शामिल करनो है और दोपहर जो तेज गर्मी है वणी में ने ढांडा चोपा ने चरावा या पचे अधिक काम करवो किसान भाइया ने बचनो छावे सा।
1: एक लारे लारे एक बात यह भी कहवा कि देखो बाणो तावड़ो घणो पड़ रहो है, गर्मी जो तेज है, तो अणी स्थिति में किसान भाई ने अपने खुदरो ध्यान भी रखना चाहे, क्योंकि जब अपना शरीर स्वस्थ रहेगा तो देखो अपना घर परिवार का सारा काम काज खेत कुड़ा का काम काज चलता रहेगा, और अगर आप मांदा कुंदा वही जावा तो अपना काम सारा रुक जावे, अणी वास्ते अपन जो है दन के तेज धूप रे महीने भी काम करो वंचनो चाहे, सुबह शाम ठंडाई के टाइम पे काम करना चाहे, और लारे लारे कही अगर अपन शरीर में कई कमजोरी लाग रही है या कई समस्या लाग रही है तो अपन तुरंत जो है अस्पताल जाइन उपचार करना चाहे सा।
0: तो या तो भी मौसम संबंधी और सामान्य जानकारी और अबे किसान भाइयारो पाछो मनोरंजन करावा और हुणावा प्यारो सो राजस्थानी गीत।

0: तो गायत्री भाई साहब, राजस्थानी लोकगीत सुनो साहब और कार्यक्रम ना आगे बढ़ावा, किसान भाई ने देवा आपकी सरकारी योजना की जानकारी, क्योंकि सरकारी योजना जितनी भी चाले है वह अपना वास्ते, अपना गांव रा वास्ते और जन कल्याण रा वास्ते चाले है। तो आप ही क्यों नहीं सरकारी योजना की जानकारी सब रा वास्ते ले नावा और योजना को लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले ही सके आने वास्ते आप ही इनकी जानकारी देवा सा। और आज अपना कार्यक्रम में आपकी जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी।
1: बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की दी लकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अंडो उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कीट या पचे बीमारियां के कारण फसल नुकसान झेलवा वाला जो भी किसान भाई है वड़ा ने वित्तीय सहायता प्रदान करनो है। और यह जो योजना है यह 13 जनवरी 2016 ने शुरुआत की दी है सर।
0: सही कह रहे हो सर। और योजना का जो उद्देश्य बता मिलिया है वन में सबों पहली है वित्तीय सुरक्षा। फसल खराब व्यवहार की स्थिति में किसान भाई ने जो है बीमा कवर मिले और वित्तीय सहायता मिले, वणियों कही है कि देखो खेती महीने जितना भी नुकसान अगर वे जाओ तो की भरपाई वे सके और यह सुनिश्चित वे सके कि जो नुकसान है वण के बाद में भी किसान भाई जो है खेती कर वो जारी रखे और वणा ने तकलीफ नहीं वेवे। और आधुनिक खेती की ने बढ़ावा की बात करना तो देखो किसान भाई ने नई और आधुनिक कृषि पद्धति है वणा ने अपनाओ को वणा ने प्रोत्साहन मिले और वणा ने फायदो मिले सा।
1: और भी उद्देश्य री जटे बात करा तो किसान भाईयारी जो आए है वंडे स्थिर करनो है ताकि वे कर्ज रे जाल में ने नी फसे। और सब मोटो तो अंडो उद्देश्य यो से कि किसान भाईया ने वित्तीय सुरक्षा मिले, कणी भी स्थिति में ने अगर फसल खराब वे रही है तो किसान भाईया ने वित्तीय सहायता मिल सके सा।
0: सही कह रहे हो सर। अणी योजना महीने प्रीमियम की दर जो है वह अलग अलग स्तर की बताई रखी है। योजना में बड़ी विशेषता यही है कि बहुत कम प्रीमियम मतलब कम पैसा लगान भी जो है गरीबों गरीब किसान भी अनको लाभ ले सके सा।
1: खरीफ फसलारी प्रीमियम री जटे बात करा तो कुल राशि रो 2% जो है वे खरीफ फसला जिस तरह की चावल है, बाजरो है, धान अनारे ऊपरे लागे है सा। रबी फसलारी बात करा जिस तरह गहूं, चना, हरूरी,

0: तो अणमी ने कुल राशि रो 1.5% जो है वे रबी फसला पे प्रीमियम लागे, और बागवानी फसला जिस तरह की फल जतरा भी है वनारे प्रीमियम री बात करा तो कुल राशि रो 5% जो है अणार पे लागे है सा।
1: सही कह रहे हो सा। और देखो अपने जो कवर वे वन के हिसाब देखो कि अपने बुआई में कहीं तरह की रुकावट नहीं आवे, और खराब मौसम के कारण जो अपना किसान भाई जो है बुआई नहीं कर पावे, अन्य स्थिति में भी वनाने जो है राहत मिल सके। खड़ी फसल मतलब सूखो है, बाढ़ है, ओलावृष्टि है, और अन्य तरह की जो भी मौसमी आपदा है या जो भी कई बीमारियां हैं आने की वजह जो नुकसान व्यवहार की स्थिति में वन में भी किसान नुकसान नहीं उठाना पड़े।
0: और अगर फसल काटवारे 14 दिन रे भीतर अगर खेत में ने हुकवारे वास्ते रखे लकी जो फसल है वणी में ने भी अगर बे मौसम वर्का वेगी है और नुकसान वेगियो है तो यह चीज भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर कियो जावे सा।
1: अब अणि योजना को अगर लाभ लेना चाहिए रहा हाँ, तो अणमें कुछ जरूरी चीज़ों की जरूरत पड़े है, तो वे चीज़ें कई कई वे सके। देखो अपन सबों पहले तो आधार कार्ड वेणो चाहे, बैंक री पासबुक वेणी चाहे, जिको कही है कि अपना बैंक रा खाता रा महीने लेन देन वे सके। भूमि संबंधी रिकॉर्ड मतलब अपना खेत री जमाबंदी है वन को रिकॉर्ड अपना कोड़े वेणो चाहे, और बुवाई को जो प्रमाण पत्र है वो अपना कहीं वेणो चाहे, तो ये सब चीज़ें वे तो आप जो बीमा संबंधी जो भी लाभ है अणि योजना को लाभ अणि में आप ही लाभ ले सका सा।
0: किसान भाई अणि योजना रो लाभ किस तरह ले सके अगर कणी भी फसल रो नुकसान वेग्यो है तो किसान भाई ने 72 घंटा रे भीतर स्थानीय कृषि अधिकारी बीमा कंपनी या पचे टोल फ्री नंबर पे सूचना देनी वेगा, और अंडे बाद में ने कंपनी आपरे खेता पे आइन सर्वे करेगा और नुकसान रे आधार पे क्लेम राशि भी मिल जाएगा सा।
1: अब हिदी अट बात यह है कि यह योजना अपना किसान भाई वास्ते एक सुरक्षा कवच है, जिन्हों को यह है कि खेती रे महीने जितरो भी जोखिम वे वरना आप कम कम कर सकें, और किसान भाई ने जो है अपनी फसल को बीमा को जरूरत जो है वह पूरी वही से कर वरना ने आर्थिक नुकसान नहीं वेगा सा। और अगर आर्थिक नुकसान नहीं वेगा तो किसान भाई के खेतों लेन घर तक जो है खुशहाली को माहौल बने दुखो रहेगा, और जटा खुशहाली री बात है तो गीत संगीत सुनन भी आप ही खुशहाली लाई सका। तो गायत्री भाई सा कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा, सुना एक और राजस्थानी गीत।
0: हाँ सर।

0: है वह जो बढ़ जावे, मिट्टी की संरचना है वण में सुधार वेवे, सूक्ष्म जीवी की संख्या है वण में बढ़ोतरी वही जावे, और रासायनिक उर्वरक की जो जरूरत है वह लगभग अपने खत्म हुई जावे, और पर्यावरण का वास्ते जो है सुरक्षित वातावरण अपने वर्मी कंपोस्ट के माध्यम में मिले सा।
1: बिल्कुल सा, तो वर्मी कंपोस्ट जो है वणावारी कई विधि है वंडी भी बात बतावा किसान भैया ने कि छायादार जगह पे आपने एक 10x3x2 फीट रो एक बेड तैयार करनो है। बेड रे तल में ने 6 इंच मोटी फसल अवशेष री परत विछावनी है और वंडे ऊपरे पानी छिड़कतो रहनो है। पचे वंडे ऊपरे 6 इंच मोटी गोबर री परत बिछावनी है और परत ने दोहराता रहनो है, यानी वापिस आपने फसल अवशेष री परत विछावनी है, गोबर री परत विछावनी और अनिने आपने 2 फीट ऊंचो नी वेजावे जत्रे कंडे यो दोहराणो है और नमी वणाई राखनी है। लारे लारे बेड में ने केंचुआ भी छोड़ देना है और जूट री बोरियो वणा ने ढांक देना है। 60-90 दना महीने जदि खाद चायरी पत्ती जैसी दानादार और गहरा रंगरी वेजावे तो अंडे छाण न उपयोग में ले लेनी है सा।
0: सही कह रहा हो सर, आनी खाद ने जिदे आप काम में लांगा तो अपने जो है उपज बहुत ही बढ़िया वेगा, और देख खरो सोना हरी की जो फसल अपने मिलेगा और जो उपज वेगा वणी को स्वाद भी अलग वेगा, वणी को जो है बाजार में कीमत भी अलग वेगा, तो वो जैविक खेती के रूप में आप जो है वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल कर सकेंगा सा। तो यो जो काम अगर आप किसान भाई करेंगा तो इको फायदा अपने मिलेगा और लारे लारे अपना समाज में एक अच्छो संदेश भी दे सका आप कि जैविक खेती के माध्यम उगैदी की फसल है वह अपना वास्ते, अपना शरीर रा वास्ते, अपना समाज रा वास्ते, अपना देश रा वास्ते, सब रा वास्ते बढ़िया रहे वैसा।
1: तो आपा तो कार्यक्रम रे माध्यम किसान भाई ने ये इस बात कहा कि जैविक खेती ने अपनानो है, मिट्टी ने उपजाऊ बनानी है और स्वस्थ फसला उगानी है सा। तो जानकारी तो नरीहारी और भी है किसान भाई रे वास्ते, पर किसान भाई रो मनोरंजन करावा पहली और हुणावा प्यारो सो राजस्थानी गीत।

0: AIR@90.
1: तो गायत्री भाई साहब राजस्थानी लोकगीत सुनाए सार कार्यक्रम ने और आगे बढ़ावा और किसान भाई ने ग्रामीण भाई ने देवा जानकारी मना काम काज की जानकारी। अब काम की बात यह है कि देखो आप जितना भी तरह काम करा घर उलेन खेत कूड़ा तक वन में एक बहुत बड़ी समस्या है वह है उदई लागवारी। अब उदई जो लागे वह अपना फसल रहा महीने भी उदई लाग जावे, नरी बार अपना घर रहा महीने भी उदई लाग जावे, अपना सामान जितना भी पड़िया दिखा गए घर में वणा में लाग जावे, लकड़ी में उदई लाग जावे, पेड़ पौधा में उदई लाग जावे, अपना घर का जो दरवाजा है वणा में उदई लाग सके, अपना घर का निवाड़िया जो है वणा में उदई लाग सके, और देखो कि अपने जो भीता है वणा रहा महीने भी उदई लाग नरी बार खराब हो कर सके। तो जो उदई लागवा की जो समस्या है वण में देखो अपना खेतारा महीने जो उदई लागे वण आप कणी तरह निजात पाई सका और अनेको कई उपाय कर सका यह जानकारी किसान भाई ने देवा सा।
2: बिल्कुल सा, या जो उदय है या रुखड़ारी जो जड़ा है तना है और रुखड़ारा जो भी अवशेष

0: तो देखो सा, यो तो हुणियो आपी राजस्थानी गीत। और देखो आज रा कार्यक्रम में आपी घणी हारी वाता की दी है। आपी चौपाल रा महीने देखो किचन गार्डन जो है वंडा विस्तार को किस तरह लाभ ले सका, मौसम संबंधी जानकारी किसान भाई ने दी दी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी भी किसान भाई ने दी दी, वर्मी कंपोस्ट को उपयोग आपी कणी तरह करी सका, और जो है उदय लागे वणियों आपी कणी तरह निजात पाई सका, यह सब जानकारी किसान भाई ने दी दी। देखो सा आज जानकारी देवार वास्ते और भी है, पर घड़ी हामू नाला तब कार्यक्रम जावारी टाइम वेरी है। तो चाला सा जय जवान
1: जय किसान।

अभी किसान भाइयों ने सुना अपना दैनिक कार्यक्रम खेती और घर। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला लगमा फिल्म लुटेरा से हमने आपके लिए लिया है, मोनाली ठाकुर की आवाज़ में।

फिल्म अय्यारी का गाना अभी आप सुन रहे थे पलक मुच्छल और साथियों की आवाज़ में। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला गाना। फिल्म का नाम मैं हूं ना, के और वसुंधरा दास की आवाज़ में।

लेकिन ऐसा गीत सुनाकर हम थोड़ी सी ठंडक पहुंचाने का एहसास आपको करवा रहे हैं। अभी आप सुन रहे हैं मैं हूं ना फिल्म का ये गीत, और अब आइए सुनते हैं अगला नगमा के की और सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

हरी हरन अलका याग्निक और जसपिंदर नरूला की आवाज में जुदाई फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। आइए सुनते हैं सनम रे फिल्म में अमाल मलिक के साथ पलक मुछल की आवाज़।

ये आवाज थी अमाल मलिक और पलक मुच्छाल की सनमरे फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत की अगली सौगात। फिल्म का नाम है लक, आवाज सलीम मर्चेंट की है।

सली मर्चेंट की आवाज के बाद आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह के साथ पलक मुच्छल की आवाज, फिल्म गब्बर इज बैक।

इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। अब वक्त है समाचारों का। समाचार पहले हिंदी और उसके बाद न्यूज़ 8 रात्रि 9 बजे। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।

0: नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
2: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल को।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने 5वीं बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक

0: विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देशभर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA,

तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम

0: में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: सो आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहां खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे

0: सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और हम इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPR बोलते हैं वो है, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है,
1: जी
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
1: जी
0: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है, तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक हम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35,000 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36,000 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी को यदि ग्रो

0: भारत की बात कर रहे हैं, 25 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक हैं तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: ये हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है, और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है। एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध जैसे क्वाड के अंदर है, उसको साथ में, इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता

0: ब्रिक्स की मीटिंग भी विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही रहने वाला है, वो सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत उन गिने चुने देशों में है खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है। तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद यह है दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा।

0: तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफकोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद ब्लड से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती हैं, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें।
1: जी
0: तो और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा,
1: जी
0: तो मैं
1: बिल्कुल
0: सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है, तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं या ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए ये है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था को और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा, ये जब भी युद्ध समाप्त होता है ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं। बहुत सारी इसमें चीजें हैं, तो मुझे लगता है

0: युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है। और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है,
1: जी
0: अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो, या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उबरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है। अभी आप सुन रहे थे चर्चा का विषय है, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राग ललित में वेंकटेश कुमार का गायन।

0: अभी आप सुन रहे थे राग श्री मैं वेंकटेश कुमार का शास्त्रीय गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब वक्त है समाचारों का। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में, दोनों ही बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल।

0: और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किये। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera Semi-High Speed Double Line Project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2000.